सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह की ठीक 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में गाई इस मातृवंदना से। रचना है डॉक्टर शब्बीर जमालो की और संगीत है अवधेश त्रिपाठी का।

अभी आपने समूह स्वर में मातृवंदना सुनी। रचना थी डॉक्टर शब्बीर जमालू की और संगीत था अवधेश त्रिपाठी का। इस मातृवंदना के बाद आइए सुनते हैं ये भक्ति गीत। स्वर है हरिओम शरण और साथियों का। आइए सुनते हैं ये पारंपरिक भक्ति रचना।

हरिओम शरण और साथियों का गाया हुआ ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सतीश भूतानी की आवाज़ में सरस्वती कुमार दीपक की ये भक्ति रचना।

और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम अर्चना के आखिर में आपको सुनवाते हैं संत मीराबाई की ये भक्ति रचना। स्वर है सुमन कल्याणपुर का।

0: संत मीराबाई की भक्ति रचना को अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ देर में सुबह 6:30 से आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज इसका 76वां भाग आप सुनेंगे और मुख्य गायक स्वर हैं राजेंद्र काचरू और चतुर सेन के। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत होगा सुबह 6:40 पर। संस्कृत में समाचारों का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 6:55 पर। सुबह 7 से पेश किया जाएगा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। सुबह 7:05 का समय है कार्यक्रम कृषि संकेत का। आज का विषय है खरीफ फसलों में कीट रोग नियंत्रण और हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे एस रघुवंशी। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 7:10 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत होगा सुबह 7:20 से। गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता होगा सुबह 7:45 पर। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 से। 8:15 पर आप सुन सकते हैं कुछ बुंदेली लोकगीत, कार्यक्रम होगा लोक संगीत। सुबह 8:30 से आप सुन सकते हैं पॉडकास्ट विथ आकाशवाणी सागर। आज का विषय होगा महिलाओं में होने वाले कैंसर पर बातचीत और हमारे साथ विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ज्योति चौहान और इनसे बातचीत करेंगे जय शेखर। सुबह 8:45 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता और सुबह 9 से 10 तक आप आनंद ले सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। सुबह 10 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 से शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी आप सुन सकते हैं। आपकी पसंद ये फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा सुबह 10:30 से। सुबह 11 से होगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 11:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। शाम 5:02 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 से आप सुन सकते हैं संगीत सरिता और शाम 6:30 पर होंगे कुछ सदाबहार फिल्मी गीत, कार्यक्रम होगा सदाबहार गीत। शाम 6:45 पर और शाम 7:20 से आप सुन सकते हैं कुछ बुंदेली लोकगीत, कार्यक्रम होगा लोकरंग। कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत प्रस्तुत की जाएगी शाम 7:05 पर। शाम 7:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद समीक्षा और कुछ फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत के तहत। प्रसारण समय होगा रात 8:15 का। रात्रि 8:30 से होगा गैर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता और कुछ फरमाइशी फिल्मी गीत सुने जा सकते हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत के तहत। प्रसारण समय होगा रात 9 का और रात्रि 9:30 से आप सुन सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। इसके पश्चात आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम और रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब सम्पन्न होता है।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432222।

0: 9797 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770-43-22-97।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज इसका 76वां भाग आप सुनेंगे और मुख्य गायक स्वर होंगे राजेंद्र काचरू और चतुर सेन की।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ सुन रहे थे। आज इसका 76वां भाग आपने सुना। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, बरसात फिल्म से। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का।

बरसात फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत रोशन के संगीत से सजा हुआ। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और फिल्म है बरसात की एक रात। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे बरसात की एक रात फिल्म से ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह फ़ोन करें, गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज सुबह 11 बजे से की जाएगी। हमारा फ़ोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का आज सुबह 11 बजे से। सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और श्रोताओं, आप सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की, गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं OP नैयर।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की गाय इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः सम्भाव्यते इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे संस्कृत में समाचार। आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह।

कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वाले स्वीकारें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हम कोई भी काम करें इसके लिए ये आवश्यक है कि हम खुद पर भरोसा करें, स्वयं पर भरोसा। स्वयं पर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी हम कोई भी कार्य करें तो हम स्वयं से ये कहें कि ये कार्य हम कर ही लेंगे, तो निश्चित रूप से वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पक्ष पर विचार करें, ये कार्य मैं अवश्य ही करूँगा, और यदि हम ये कहेंगे कि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर पाऊंगा, दोनों बातों में बहुत अंतर है। हमारा आत्मविश्वास जब अहंकार में बदल जाता है तो ये हमारे लिए घातक हो जाता है। जब हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो और कोई कर ही नहीं सकता, तो ये अहंकार हमें धीरे धीरे खोखला करने लगता है। श्रोताओं कहते हैं, उड़ान बड़ी चीज है मगर मगरूर मत होना। उड़ान बड़ी चीज है मगर मगरूर मत होना। जमीन से रिश्ता कभी अपना तुम खत्म मत करना। जो परिंदे उड़कर आसमान छूने का दावा करते हैं, उन्हें भी लौटकर जमीन पर आना ही पड़ता है। श्रोताओं, अहंकार हमारे बनाए रिश्तों को तोड़ देता है और कई बुराइयां भी जन्म लेने लगती हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति में अहंकार जन्म ले लेता है तो ऐसे व्यक्ति किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। यही वजह होती है कि ऐसे व्यक्तियों से हर कोई दूर ही रहना चाहता है। अहंकारी व्यक्ति अपने विवेक को धीरे धीरे खो देता है। ऐसे व्यक्ति गलत या सही का फर्क नहीं समझते, वे बस स्वयं को ही सही और श्रेष्ठ मानने लगते हैं। इतिहास गवाह है श्रोताओं, बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का पतन उसके अहंकार के कारण ही हुआ है। लेकिन श्रोताओं, हम अपनी सोच को बदलकर अहंकार को खत्म भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो श्रेष्ठता के साथ करें, लेकिन ये कतई ना सोचें कि हम जैसा कार्य कोई और कर ही नहीं सकता। निश्चित रूप से हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठतम लोग भी मौजूद हैं। हम अपने आसपास, परिवार, समाज में हमेशा विनम्रता और कृतज्ञता का भाव रखें। हमें यह समझना होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस चीज का आज हम घमंड कर रहे हैं वो कल शायद हमारी ना हो। अगर हम ताउम्र इसी विचार के साथ आगे बढ़ें तो हमें हर रोज कुछ नया सीखना है और लगातार सीखते रहने का भाव रखें, तो अहंकार रूपी विचार हमेशा हमारे साथ दूर ही रहेगा। जिस तरह फलों से भरा पूरा पेड़ हमेशा झुका रहता है, उसी तरह एक महान गुणी और आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा सरल और विनम्र होता है। इस विचार के साथ ही आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक्रम सुबह सुबह। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत।

0: आज का विषय है खरीफ फसलों में कीट रोग नियंत्रण, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस एस रघुवंशी।
1: यही सलाह देंगे किसान भाइयों,

0: रखें कि खरपतवार बिल्कुल खेतों के अलावा मेड़ों को भी साफ कर दें और साथ साथ में पानी का भराव ना हो पाए। और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप हमको शाम के टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है, भ्रमण जरूर करें भाई, और खेत में थोड़े से अंदर घुस कर देखें कि उनको कहीं इल्ली वगैरह दिख तो नहीं रही है। मैंने अभी बताया कि सोयाबीन की जो फसल है इस बार एक समय में बोनी नहीं हो पाई, कई जगह समय में बोनी हो गई है, तो वहाँ पर क्या है कि हमारा पूरा खरपतवार नियंत्रण भी हो चुका होगा किसान भाइयों का, और अब वहाँ फसल पहुँच रही होगी करीब 25 दिन से ऊपर की। अब हम किसान भाइयों को ये बोलना चाहें कहते कि जैसी फसल की उनकी स्थिति है वैसे वो अपना खेतों में काम देख ले। जैसे हम बता रहे हैं पहले कि जिन क्षेत्रों में समय पर बोनी हुई हुई है तो वहाँ पर अब सोयाबीन हमारा 25 दिन से ऊपर का पहुँच गया, तो उन्होंने खरपतवार नियंत्रण कर लिया होगा। अब वहाँ पर कई जगह एक सफेद मक्खी आती है, जिससे कि हम बोलते हैं साहब कहते हैं कि एलोमोजेक रोग आ रहा है, पीतसर रोग जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा उर्द में प्रभाव तो करती है उर्द को, और साथ साथ में सोयाबीन पर भी उसका असर होता है। तो वो सफ़ेद मक्खी देखें कि सफ़ेद मक्खी तो हमारे खेतों में नहीं आ रही। साथ साथ में एक जैसे ही हमारा सोयाबीन 28 से 30 दिन का पहुंचेगा तो इसको हम बोलते हैं किसान अपनी लोकल भाषा में चक्रभ्रंग कीट आ रहा है, बोलते हैं रिंग कटर, और हम बोलते हैं उसको गर्डल बीटल अंग्रेजी में, और हिंदी बोलते हैं चक्रभ्रंग। ये कीट का भी प्रकोप होता है, और इस कीट का ये सबसे ज्यादा सोयाबीन का हानिकारक कीट होता है, यदि इसका प्रकोप हो गया है तो पौधा ऊपर से सूख जाता है, फिर मतलब पौधे की बढ़वार खत्म हो जाएगी और हमारी वहीं पर पौधे की वृद्धि में रोक लग जाती है। इनके नियंत्रण के लिए हमारे पास जो एक अच्छी जो हम सस्ती बोल सकते हैं उसको कि 5 बीघा मतलब 2.5 एकड़ खेत या 1 हेक्टर खेत में जो दवाई होती है प्रोपोनोफॉस 50 EC क्षमता वाली, उसको ले लें करीब 1.25 लीटर मतलब 1250 ml लेके, और 500 लीटर पानी में घोल बना के बढ़िया छिड़काव कर दें। तो उससे क्या है कि जो हमारे सफ़ेद मक्खी आती है, तना मक्खी आती है, तंबाकू गिल्ली आती है, आजकल तो सोयाबीन में चने की गिल्ली भी आने लगी, सबने अपना सिस्टम चेंज कर लिया, तो इन सबके नियंत्रण करने के लिए प्रोपोनोफॉस 50 EC की मात्रा जो आती दवाई में उसकी मात्रा 1250 ml मतलब 1.25 लीटर, और पानी की मात्रा यदि हम सामान्य स्प्रे पंप से स्प्रे कर रहे हैं तो करीब 500 लीटर पानी में घोल लें इसको, और 1 हेक्टर में अच्छा बढ़िया स्प्रे कर दें, तो इन सभी से उनका नियंत्रण हो जाएगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं साहब प्रोपोनोफॉस तो हमारी पुरानी दवाई है या ज़्यादा उसमें चलन नहीं आ रही, तो उसकी दूसरी जगह हमारी दवाई आती है एमामेक्टिन बेंजोएट, उसकी करीब 425 ml दवाई लगेगी, कितने में वही 1 हेक्टर, और या एकड़ में बोले तो 2.5 एकड़, और बीघे में बोले तो 5 बीघा, पानी की मात्रा भी वही 500 लीटर या 120 लीटर। जहाँ पे हमारा पावर स्प्रे पंप है, तो हम बोलते हैं ट्रैक्टर चल पावर स्प्रे, बहुत तेजी से किसान वो मजदूर लोग घूमते हैं लेके, वहाँ पे पानी की मात्रा कम लगेगी, तो वहाँ पर पावर स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर पानी की मात्रा लगेगी 120 लीटर, और जो हाथ वाला पंप रहता है उससे यदि स्प्रे करते हैं तो वहाँ लगती है हमारी 500 लीटर पानी लगता है, दवाई की मात्रा उतनी रहेगी, हमारी प्रोपोनोफॉस 50 EC की मात्रा रहेगी 1.25 लीटर मतलब 1250 ml, और एमामेक्टिन बेंजोएट रहेगी उसकी दवाई की मात्रा रहेगी 425 ml। ये किसान भाई ध्यान रखें, तो ये मैंने बताया जिनने समय पर सोयाबीन की बोनी की है उनको जो आग कीड़े मकोड़ों के नियंत्रण के लिए इस दवा का स्प्रे करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत, आज का विषय था खरीफ फसलों में कीट रोग नियंत्रण, और हमारे साथ विशेषज्ञ थे डॉक्टर SS रघुवंशी। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मूंग खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस बल और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। भोपाल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कल नवीन भर्ती में चयनित पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों को बैज लगाए। मुख्यमंत्री ने खंडवा में नई पुलिस बटालियन गठित करने और प्रदेश में 3 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने की घोषणा की।
1: हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में एक बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए। खंडवा के साथ साथ और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तीनों बटालियन बनाने की घोषणा कर। हमें बेगा, भारिया, सहरिया, इनकी कंपनियों का गठन भी कर लिया बटालियन के अंदर से, ताकि हमारी ये अति पिछड़ी जातियां हैं,
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप कोष जारी किया। इसके अंतर्गत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से 21 करोड़ रूपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इस पहल से कृषि विद्यार्थियों को अब हर महीने DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के आर्थिक मदद मिल सकेगी।
2: पिछले साल जब हमने विद्यार्थियों का एग्री स्टूडेंट्स का सम्मेलन किया था, तो ये बात आई थी कि स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो पहले यूनिवर्सिटी में जाती है, यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज में जाती है, और फिर स्टूडेंट्स के पास जाते जाते बहुत समय लग जाता है, और कई बार तो इतना देर से पहुंचती है कि परीक्षा ही हो जाती है। इसलिए समय पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले, इसका शुभारंभ हुआ है DBT के माध्यम से। सिंगल क्लिक से स्कॉलरशिप 6,080 विद्यार्थियों के खाते में पहुंची है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और परिषद की सहमति से मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद राज्य वन प्राणी की 32वीं बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण भी करेंगे। वहीं भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव VC के माध्यम से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मंत्रालय में प्रदेश में मूंग खरीदी कार्य की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दोषी पाए जाने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि केंद्र से प्रदेश के लिए करीब 4,54,000 टन मूंग खरीदी का लक्ष्य मिला है और करीब 3,47,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनमें से 3,42,000 किसानों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए कि सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां बारिश को ले मद्देनजर करके रखी जाएं, तथा 10 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने जिला और राज्य स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने, जलाशयों की निगरानी और राहत शिविरों की तैयारी तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में समय पर चेतावनी देने के निर्देश दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल यानी 12 अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे। वे प्रदेश में निवेश के अवसरों, औद्योगिक नीतियों और निवेशक सुविधाओं की जानकारी देकर उद्योग समूह को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योग समूह के

प्रतिनिधियों से वन टू वन चर्चा करेंगे। इस दौरान वस्त्र, ऊर्जा, अधोसंरचना, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित करेंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि, जलभराव, बाढ़, जर्जर भवन गिरने और वज्रपात जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य संभाग और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। नगरी विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कल बताया कि कंट्रोल रूम संबंधित विभागों के समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू करने की स्वीकृति दी है, जिनमें विदिशा जिले का शासकीय कन्या महाविद्यालय बासौदा, शाजापुर जिले का जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर और आगरमालवा जिले का शासकीय महाविद्यालय सोयत कलां शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि संस्कृत के अध्ययन का विस्तार विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, रंगोली और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं झाबुआ में आम नागरिकों और विद्यार्थियों की सहभागिता से तिरंगा रैली, रंगोली और मानव श्रृंखला आयोजित की गई। राणापुर जनपद की ग्राम पंचायत ढोलियावड़ में विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं डिंडौरी में जिला मुख्यालय से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जबकि धार में नालछा विकासखंड के ग्राम जीरापुर स्थित ऐतिहासिक 64 योगिनी मंदिर परिसर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में भारतीय साड़ी, हथकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए साड़ी ड्रेपिंग एवं हैंडलूम प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 13 प्रतिभागियों ने बंगाली, महाराष्ट्रीयन, नवारी, बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी सहित विभिन्न पारंपरिक साड़ियों की प्रस्तुतियां दी। भोपाल में आज से 16 अगस्त तक अपर लेक स्थित बोट क्लब में राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय रैंकिंग की इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे। याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तकनीकी मार्गदर्शन में होने वाली इस प्रतियोगिता में 12 ज्यूरी सदस्य भी शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर देना है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से साइबर जालसाजों से सावधान रहने और बिजली बिल का भुगतान केवल अधिकृत माध्यमों से करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निजी मोबाइल नंबर से बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर भेजे जाने वाले SMS, व्हाट्सएप संदेश और फोन कॉल फर्जी हो सकते हैं। उपभोक्ता अनजान नंबर पर बिल की राशि ट्रांसफर न करें और अपना पिन या बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना दें। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में लंबे समय से कम बारिश के बाद अब मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर नदियां और नाले उफान पर हैं, कई जगह आपदा की स्थिति बन गई है। राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल एवं होमगार्ड्स की टीमों ने बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। होमगार्ड सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को क्षेत्रीय टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। दिनभर चले इन अभियानों के दौरान जवानों द्वारा 98 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत पहुंचाई गई। वहीं मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर कला और जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। IIM इंदौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के 2026-31 बैच की शुरुआत इंडक्शन कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमें 156 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। आगरमालवा में भारी बारिश के चलते कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने सभी स्कूलों में आज यानी मंगलवार का अवकाश घोषित किया है। खंडवा में सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डीमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डीमर ने भोपाल के लोअर लेक में आयोजित नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में 6 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। मंदसौर की समय सीमा की बैठक में कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों की पूर्व तैयारी कर 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। सतना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन 12 अगस्त तक संजीवनी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और झाबुआ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मूंग खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, आप सभी को इंतजार होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत सूरज फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनना चाहा है चितलवाड़ी अकोला से। ये वर्ष फरमाइश हमें मिली है अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश, अधीरा इंगले, राजवी और समस्त परिवार की। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निहावकर, निर्मला निहावकर और विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मेहरकर की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। ये पत्र है ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से। दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र मालाकार का पत्र हम तक पहुंचा है इसी गीत को सुनने के लिए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत सूरज फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

सूरज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। और आइए श्रोताओं, ले रही ये अगली व्हाट्सएप फरमाइश। लिखने वाले हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे और सुहास शेंडे। राजकोट गुजरात से ये व्हाट्सएप फरमाइश है रश्मि झरना और भरत कुमार की। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा और दिलीप सिंह पवार की फरमाइश प्राप्त हुई है। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमसाया फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है शिवन रिजवी ने और इसे संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने हमसाया फिल्म का गीत सुना। और श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह फ़ोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज सुबह 11 बजे से की जाएगी। श्रोताओं, हमारा फ़ोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का आज सुबह 11 बजे से। सूचना समाप्त हुई और आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोतागढ़ हैं। ये पत्र आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का और ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई हैं आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल की। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। सालार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन की व्हाट्सएप फरमाइश प्राप्त हुई है। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, इन सभी की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए सुनते हैं साजन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश, फकीरा फिल्म का गीत। इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत और संगीत है

रविंद्र जैन का। इस गीत को सुनने का अनुरोध हमें लिख भेजा है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर और निशा रानी नागरिकर ने। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, शौर्या श्रेयस अंकिता और अनिकेत चौहान की ओर से फरमाइश प्राप्त हुई है। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी और सौरभ डुंडी की फरमाइश प्राप्त हुई है। मारहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, यशफ और अनम अब्बासी की फरमाइश मिली है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फकीरा फिल्म का ये गीत।

फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:45 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम संगीत सरिता का। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आगाज़ अनुराधा पौडवाल के गाए इस गीत से। गीत को लिखा है समीर ने।

0: और श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज सुबह 11 बजे से की जाएगी। हमारा फोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज सुबह 11 बजे से।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 97704422297।
0: और आइए श्रोताओं कार्यक्रम संगीत सरिता का ये अगला गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत को लिखा है ललित सेन ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना और आइए श्रोताओं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में।

सोनू निगम के गाए इस गैर फिल्मी गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात का अनुप्रसारण। अब हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और

0: इयारा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
2: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
3: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
4: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर

कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का

0: की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
4: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर

0: बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार प्रभात का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। समय है बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं केशव सुल्लेरे का गाया हुआ ये लोकगीत। आइए सुनते हैं ये वर्षा गीत।

केशव सुलेरे का गाया हुआ ये वर्षा गीत अभी आपने सुना। और श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह फोन करें, गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज सुबह 11 बजे से की जाएगी। हमारा फ़ोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 075। तो श्रोताओं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का आज सुबह 11 बजे से। और आइए कार्यक्रम लोक संगीत में अब आपको सुनवाते हैं राम प्रसाद अहिरवार और साथियों का गाया हुआ ये सहरा।

राम प्रसाद अहिरवार के स्वर में अभी आपने ये सहरा सुना। और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं भगवान सिंह ठाकुर की गाई हुई ये कजरी।

अभी आपने ये कजरी सुनी, स्वर था भगवान सिंह ठाकुर का। इस कजरी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विथ आकाशवाणी सागर। आज का विषय है महिलाओं में होने वाले कैंसर, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ज्योति चौहान, और इनसे बातचीत कर रहे हैं जय शिखर। आइए सुनते हैं ये पॉडकास्ट।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति चौहान।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार मैम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने ये क्या लगा रखा है, निशान कुछ ऐसा बना हुआ है?
1: हाँ, ये लाइट पर्पल कलर जिसको हम मोव भी कहते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ये कलर जो है ये डिनोट करता है कैंसर अवेयरनेस। सभी प्रकार के कैंसर की अवेयरनेस के लिए ये लाइट पर्पल कलर जो रहता है।

0: इसको ये डिनोट करता है। अलग अलग कैंसर्स को उन्होंने अलग अलग रंग दिए हुए
1: जी बिल्कुल।
0: तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक दिया हुआ है और सर्वाइकल कैंसर के लिए उन्होंने टील ग्रीन विद व्हाइट ऐसा दिया हुआ है। ऐसे ही अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग कलर्स हैं।
1: जी जी जी। आज हम बात करेंगे खासतौर से महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में, ये कौन कौन से कैंसर हैं और ये कैसे होते हैं।
0: महिलाओं में सबसे अधिक तो ब्रेस्ट कैंसर होता है और वही जानलेवा भी सिद्ध होता है महिलाओं में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर बच्चेदानी का कैंसर होता है। जो बच्चेदानी है उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस यानी जो मेन पार्ट होता है बच्चेदानी का वो, और दूसरा बच्चेदानी का जो मुंह रहता है। जो बच्चेदानी का मुंह रहता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं और उस एरिया का कैंसर सेकेंड लार्जेस्ट होता है। फिर थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे रहते हैं ओरल कैंसर्स, मुंह का कैंसर, क्योंकि भारतवर्ष में और खासकर मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में विशेष रूप से कुछ ज्यादा ही तंबाकू खाने का चलन है। महिलाएं भी खाती हैं।
1: तो मैम, इन कैंसर से हम कैसे बचा सकते हैं महिलाओं को?
0: सबसे पहले तो हम ये जाने कि इसके कारण क्या है। अगर कारण पता होंगे तो निवारण भी संभव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। ब्रेस्ट कैंसर के कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये रहता है कि अगर उस जगह को यूज नहीं किया गया हो, जैसे जिनकी शादी नहीं हुई या जिनके बच्चे नहीं हुए या जिनकी शादी हो गई बच्चे हो गए लेकिन उन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया
1: जी।
0: तो वहां की जो ग्रंथियां हैं और जो वहां का टिश्यू है उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी सेल्स की स्टार्ट हो जाती है और वो कैंसर प्रोड्यूस करता है।
1: श्रोताओं, ये कितनी बड़ी बात बताई है डॉक्टर साहिबा ने कि कई माताएं आज के दौर में हमने ऐसा भी देखा है उनके शरीर में बदलाव आ जाएंगे तो वो बच्चे को फीड कराने से बचती हैं, बच्चे को स्तनपान कराने से बचती हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं।
0: बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ज्यादातर वही महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की शिकार होती हैं जिनने ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक और बात, जहां आपने बात करी है फिगर की, तो फिगर आपका और बेटर होएगा अगर आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो, क्योंकि वहां आपके हार्मोन्स सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगे और हार्मोन्स आपके बॉडी को शेप देते हैं
1: जी।
0: तो बेटर बॉडीली शेप में महिलाएं रहेंगी यदि वो बच्चे को स्वयं स्तनपान कराएं।
1: अच्छा अच्छा, ये तो हो गई बात कि ब्रेस्ट कैंसर कैसा होता है। दूसरी तरफ हम देखें कि गर्भाशय का कैंसर, इसमें भी दो प्रकार के बता दिया आपने। तो ये कैसे होते हैं महिलाओं में?
0: गर्भाशय का जो कैंसर है इसका थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाता है। अगर किसी की जल्दी शादी हो गई हो, हमारे एरिया में शादियां भी जल्दी हो जाती, हालांकि उस पर नकेल कसी जा रही है लेकिन फिर भी पूरा अभी ठीक नहीं हो पाया, जल्दी शादी हो जाती, जल्दी बच्चे हो जाते और कम समय अंतराल पे अधिक बच्चे हो जाते हैं। कम समय अंतराल पर अगर बच्चेदानी को अपने स्थान पर आने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसके पहले ही दूसरा बच्चा गर्भ में आ जाएगा तो बच्चेदानी पर डेफिनेटली ज्यादा लोड पड़ेगा और वहां के टिश्यूज गड़बड़ तरीके से डिवाइड करेंगे और गर्भाशय का कैंसर होने की संभावना है। यहाँ पे एक और बात बहुत जरूरी है, ये जो अर्ली प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, थोड़े थोड़े अंतराल पे कई सारे बच्चे, ये कारण तो है ही है। इसके अतिरिक्त यदि हम प्राइवेट पार्ट्स का अच्छी तरह से सफाई नहीं रखते हैं तो भी गर्भाशय के कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। और एक कारण है जो बताना चाहूंगी वो ये है कि अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो उसमें भी इस प्रकार के कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ज्यादा होती हैं और उसके कारण इनके सेल्स बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं और एक एरिया होते हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं
1: जी।
0: अंदर का जो टिश्यू होता है गर्भाशय का वो कॉलमनर सेल से बना होता है और जो बाहर का होता है वो स्क्वैमस सेल से बना होता है और इनके बीच की जो जगह होती है उसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। वहीं पर सबसे ज्यादा बदलाव होते हैं कैंसर के, वहीं से कैंसर शुरू होता है और वहीं से हम उसको पकड़ते हैं।
1: ग्रामीण महिलाओं में कई बार देखा जाता है कि जब मासिक स्राव शुरू होता है तो उनके पास पैड की सुविधा नहीं रहती है कई बार, तो वो एक ही कपड़े का बार बार यूज कर लेती हैं या कुछ भी बिना साफ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल कर लेती, तो क्या वो भी कैंसर का कारक बनता है?
0: बिल्कुल सही पॉइंट किया आपने। अगर सैनिटरी पैड हम डिस्पोज ऑफ नहीं करें एक विशेष समय अंतराल के बाद, जब वो कम 75-80% पूरा का पूरा सोक हो जाता है, तो हमें उसको चेंज करना चाहिए। या अगर हम लैट्रिन बाथरूम जाते हैं उसके बाद उसका स्थान बदल जाता है, क्योंकि हम दोबारा से जब उसको पहनते हैं तो जगह बदल

0: जाती है और जगह बदलने से एक बहुत पास में एरिया होता है एनल रीजन, वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं स्पेशली इकोलाई वो आगे की तरफ आ जाते हैं जो जेनिटल एरिया है और वहां पे आने से वो वहां पे पनप की इंफेक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर महिलाएं कम पानी पीती हैं या उनको कहीं बाहर जाके काम करना पड़ता है, पानी न पीना पड़े बार बार, वहां पे कई बार टॉयलेट की सुविधा नहीं रहती, बार बार टॉयलेट न जाना पड़े, इस चक्कर में वो कम पानी पीती है तो भी वहां पे यूरिनरी इन्फेक्शन और जेनिटो यूनिट ट्रैक बहुत पास पास होते हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: मिले हुए रहते हैं महिलाओं में, इसलिए भी इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण हो जाता है कैंसर का।
1: अच्छा, आज के वातावरण को हम देखें तो ये कहां तक जिम्मेदार हो रहा है महिलाओं में होने वाले और दूसरे कैंसर्स के बारे में?
0: ये भी बहुत ही अच्छा सवाल आपने रखा है। आजकल फास्ट फूड का बहुत चलन हो गया है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग विदेशियों का अंधानुकरण करने लगे हैं कि खाना घर पे बनाना ही ना पड़े। और वो जो खाना आता है वो प्रिजर्व्ड खाना रहता है जिसको वो माइक्रो करके हमें दे देते हैं। तो अगर किसी चीज को प्रिजर्व करना पड़ेगा तो उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा और जो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स उसमें मिलते हैं वो नोन कार्सिनोजेनिक्स हैं। और जो चाइनीज का एक चलन चल गया है हमारे यहाँ पे ज्यादा, उसमें जो एजिनोमोटो नाम का पदार्थ डलता है वो भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसका नाम होता है, वो भी डेफिनेट कॉज ऑफ कैंसर है। तो ये कुछ चीजें जो पैकेज्ड होती हैं, पाम ऑयल, जितने भी ये कुरकुरे या जितने नमकीन रहते हैं, अगर उसकी पैकेट को पलट के देखिएगा तो उसमें कंटेंट्स जब लिखे होते हैं तो उसमें ऑयल लिखा होता है। अगर वो पाम ऑयल लिखा है तो वो ये पाम ऑयल बहुत बड़ा कार्सिनोजन है।
1: अच्छा,
0: मतलब कैंसर प्रोड्यूस करने वाली।
1: कैसे बनता है पाम ऑयल?
0: पाम ऑयल रहता है यूजली मलेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जहाँ पे पाम ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, ताड़ के पेड़, खजूर के पेड़, उनके तनों से निकाल के चीजों को और उसको वो लोग प्रोसेस करते हैं और उससे पाम ऑयल बनता है। पाम सीड्स रहते हैं उनसे भी एक्सट्रैक्शन होता है पाम ऑयल का। ये सबसे सस्ता ऑयल है और सबसे ज्यादा घातक है कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइडियली तो WHO को चाहिए कि ये USFDA को चाहिए कि इसको बैन कर दे।
1: जी बिल्कुल,
0: जबकि सस्ता होने के कारण ये सबसे ज्यादा उपयोग में आता है और जितनी चीजें हम बाजार से खरीदते हैं उन सब में पाम ऑयल 99% चीजों में होता है।
1: अच्छा मैम, किसी महिला को पता चल जाता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर या गर्भाशय का कैंसर है, हो गया है और आज इलाज की ओर अगर हम देखें तो बहुत ही तरक्की कर चुके हैं हम, तो क्या क्या इलाज है इनके और क्या एक महिला जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है या गर्भाशय का कैंसर हो गया, क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती हैं?
0: बिल्कुल ठीक हो सकती यदि उसको शुरुआती अवस्था में देख लिया जाए, पहचान लिया जाए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहता है।
1: अच्छा।
0: जिसकी माँ, बहन या कोई ब्लड रिलेटिव में फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री में कैंसर होता है उनमें BRCA1 एंड BRCA1 2 ये दो प्रकार के जीन्स रहते हैं, जेनेटिक मार्कर्स हम लोग इनको बोलते हैं, इनका टेस्ट करवा लिया जाता है तो ये समझ में आ जाता है कि आपके होने की संभावना है क्या। एंजेलिना जॉन नाम की जोली एक्ट्रेस थी, उसने तो अपना प्रोफाइल लिखी क्योंकि वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज थी तो उसने तो मास्टेक्टमी पहले से ही करवा लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि इतनी एक्सट्रीम डिग्री पे आप चले जाएं, इतना भी डरने की जरूरत नहीं, मगर जीरो स्टेज पर भी कैंसर को पकड़ा जाता है ब्रेस्ट कैंसर में और उस स्टेज पर अगर हम उसका इलाज कर दें तो वो 100% क्योरेबल है। और गर्भाशय का कैंसर तो हम तब पकड़ लेते हैं जब उसमें केवल सेल्युलर चेंजेस हो रहे होते हैं। पैप स्मियर एक जांच होती है जिससे हम उसे पकड़ सकते हैं और एक होते हैं VIA, विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड। तो ये तो हम सिर्फ देखकर ही पता कर लेते हैं क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बदल जाता है। न्यूक्लियस आमतौर पर छोटा होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा, लेकिन कैंसर सेल्स में न्यूक्लियस ज्यादा हो जाता है और न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है एसिटिक एसिड से। और ये सिंपल प्रिंसिपल यूज करके हम बहुत ही सस्ते मेथड से कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं तब जब वो हुआ भी नहीं है, कार्सिनोमा इन सीटू।
1: लेकिन इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
0: जागरूकता जरूरी है। 30 साल से 65 साल की सभी महिलाओं को कम से कम साल में एक बार अपना VIA परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए।
1: और इसमें खर्च कितना आता होगा?
0: फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सरकारी अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी करना चाहेगा तो एसिटिक एसिड बहुत ही सस्ती आती है, वो उसको भी करेगा नॉमिनल चार्जेस में।

0: वो कर सकता है।
1: गर्भाशय का कैंसर है तो गर्भाशय निकाल दिया जाता है तो बहुत हद तक हमने देखा फिर कैंसर आगे नहीं फैलता कि उनको गर्भाशय निकाल भी दिया गया था लेकिन कैंसर कुछ दिनों बाद आया। ऐसे ही हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसके बाद वो कैंसर पता नहीं कैसे उनके सिर में पहुंच गया और फिर ब्रेन ट्यूमर का रूप रख के फिर कैंसर वहां पे हो गया।
0: ये तब होता है जब ऑलरेडी ये कहीं ब्लड स्ट्रीम में आ चुका होता है, लिम्फैटिक्स में आ चुका होता है। तो हमें करना ये होता है कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती हैं, उनका भी 100% उनके बायोप्सी होने चाहिए, उनका भी रिमूवल होना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी सीडलिंग रख लेते हैं, छोटे छोटे बीज के रूप में रख लेते हैं कैंसर सेल्स को, जो कि दिखाई नहीं देते। इसीलिए उनको फॉलोअप्स के लिए बुलाया जाता है, बड़े रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं कैंसर के। अगर वो टाइमली, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा ऐसे सोचते हैं मरीज कई बार, और रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं जाते। कई बार आर्थिक तंगी भी एक कारण बन जाती है, क्योंकि कई बार कुछ कैंसर की जांचें यहाँ होती ही नहीं है। जैसे हमारा शहर सागर है, यहाँ पेट स्कैन नहीं होता, जबकि उसकी स्क्रीनिंग के लिए एक बड़ी इसेंशियल चीज है ये, कि होना चाहिए कि पता चले पेट स्कैन करने से पूरे शरीर में अगर कहीं पर भी छोटी सी सीडलिंग भी होगी तो वो पकड़ी जा सकती है, क्योंकि शुगर इनटेक जो है वो कैंसर सेल ही करता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो शुगर, इसीलिए अब जब शुगर पे वो फीड करता है तो अगर कैंसर जिसको हो गया है वो अपने खाने में सिर्फ एक ही तब्दीली कर दे कि शुगर फ्री कर दे,
1: क्या बात है,
0: कैंसर मर जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है ये, और बाहर देशों में तो कई लोगों ने वैसे भी शुगर को कंटेंट को कम करना शुरू कर दिया। कैलोरी काउंट करके लिए ठीक रहेगा,
1: बिल्कुल,
0: जितने आप हल्के रहेंगे उतने आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, कैंसर को आप न्योता नहीं देंगे, क्योंकि कैंसर वर हमारे वातावरण तक में है। अब हम कहां कहां तक किस किस चीज से लड़िएगा, आप चाय पीते हैं डिस्पोजेबल कप्स में, हाँ। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं कुछ भी, तो माइक्रो प्लास्टिक से ले आते हैं, उसी में सबसे ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक होते हैं और वो भी डेफिनेटिव कॉज है कैंसर के। और पॉलिथीन में चाय लेके आते वाले बहुत सारे लोग देखे हमने, और बाद में वो अपने कप्स में डाल लेते हैं। तो भाई एक थर्मस रख लीजिए, कभी भी पॉलिथीन में चाय में अगर हॉट कोई भी चीज है और उसको उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स अगर किसी भी हीटेड एजेंट के कांटेक्ट में आते तो रिलीज कर देते हैं।
1: प्लास्टिक का कम से कम यूज करें,
0: हाँ,
1: तो शायद बहुत हद तक हम कई बीमारियों से बच सकते हैं।
0: और वाटर बॉटल ट्रैवलिंग में खासतौर पर जो हम लोग खरीद लेते हैं रस्ते से और कार में रख लेते हैं और लंबी ट्रैवल पे जा रहे
1: हैं, वो भी नुकसानदायक है,
0: वो बहुत नुकसानदायक, क्योंकि हीटेड एनवायरनमेंट कार में हो जाएगा तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज हो जाएंगे। ऐसी जो एल्युमिनियम फॉइल हम यूज करते थे पहले, बड़ा फैशनेबल तरीका था कि हम खाना पैक करके ले जा रहे हैं जब ट्रैवल कर रहे हैं तो एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके ले जा रहे हैं, वो भी रिलीज करती है कार्सिनोजेंस। तो बटर पेपर यूज करना ज्यादा अच्छा है बजाय एल्युमिनियम फॉइल यूज करने के। ये जो आपने बात की थी आपके दो परिचित लोगों की, जहां कैंसर सर फैल गया था, वहां जो स्टेज ऑफ डायग्नोसिस थी वो डेफिनेटली इनिशियल स्टेज न रही होगी, सेकेंड या थर्ड स्टेज रही होगी। और सर्जरी गर्भाशय के कैंसर में ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, वहां रेडियोथेरेपी भी है और वहां कीमोथेरेपी भी है। तो टाइप ऑफ सेल के अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट होता है। तो मैस्टेक्टमी कई बार तो ठीक है, हम व्हाट बेस्ट वी कैन डू, हम तो यही सोचकर कई बार चीजें करते हैं, और अब तो मॉडिफाइड तरीके इतने आ गए, जिस प्रकार का सेल है उस प्रकार की सर्जरी की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर में पूरा ब्रेस्ट नहीं हटाया जाता, कई बार लंपेक्टमी की जाती है विच इज फॉलोड बाई कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। तो कई लोग जो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अगर हमारी मैस्टेक्टमी हो गई तो हम, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। आजकल इतने रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, कॉन्फॉर्मल रेडियोथेरेपीज आ गई हैं, जो आपके दूसरे सेल्स को बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ वहीं पर रेडिएशन पहुंचाती हैं जहां पे उसकी जरूरत है। प्रोसीजर्स इतने अच्छे हो गए हैं कि अगर अर्लियर स्टेज में हम डायग्नोस कर लें तो हम 100% प्रोटेक्टेड रह सकते हैं।
1: डॉक्टर साहिबा, एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जहां पर आपको भी अच्छा लगेगा, कोई एक ऐसा गीत जो डॉक्टर साहिबा को बहुत पसंद है, फिल्मी गीत, और अक्सर वो आप गुनगुना लेती हैं जब भी कभी कोई सर्जरी करती हैं, किसी अच्छे काम के लिए जाती हैं, तो कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद है?
0: ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्व

0: बहुत ही प्यारा गाना था ये मैम। और अब चलते चलते आपसे जाना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे।
1: हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि 30 साल से लेकर 65 साल की आयु में अगर आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई भी महिला है तो उसको सबसे पास के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाइए, निशुल्क आपकी जांचें होंगी। ये तीन इंपॉर्टेंट कैंसर्स जिनका मैंने नाम लिया, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और ओरल कैंसर, मुख का कैंसर, इन तीनों की जांचें फ्री हो जाएंगी और आपको आगे का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यदि शुरुआती स्टेज में कुछ होगा, एडवांस स्टेज में होगा तो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि होने ही न दें कैंसर।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। आज हमारे साथ मौजूद थी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर ज्योति चौहान जी, और इनसे हमने जाना महिलाओं में होने वाले कैंसर के रोग के बारे में, कैसे ये कैंसर होता है, इसका उपचार क्या है और इसका बचाव क्या है। उम्मीद है ये हमारा पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद मैम।

अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। आज का विषय था महिलाओं में होने वाले कैंसर और विशेषज्ञ थी डॉक्टर ज्योति चौहान और इनसे बातचीत कर रहे थे जय शिखर। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:52 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह फोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज सुबह 11 बजे से की जाएगी। हमारा फोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज सुबह 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 97-70-43-22-97।
0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

मुबारका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजें थी, कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था। आज वर्ल्ड स्टील पैन दिवस है, विश्व स्टील पैन दिवस हर साल 11 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। स्टील पैन दुनिया का अनोखा एक वाद्य यंत्र है जिसे पैन या स्टील ड्रम भी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, इसकी परंपरा को मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। स्टील पैन की उत्पत्ति कैरेबियाई सागर में स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो में हुई और इसे 20वीं सदी में विकसित किया गया। ये वाद्य यंत्र स्टील के ड्रम से तैयार किया जाता है और इसकी ध्वनि में एक अलग ही मिठास और ऊर्जा महसूस होती है। इसकी खासियत यह है कि साधारण दिखाई देने वाली धातु को कलाकार अपने हुनर से, अपनी कला से मधुर संगीत में बदल देते हैं। स्टील पैन का विकास

कैरेबियाई और वहां के रचना धर्मिता से जुड़ा है। धीरे धीरे इसकी धुने द्वीपीय देश त्रिनिदाद और टोबैगो की सीमाओं से निकलकर दुनिया

0: मोहित चौहान की आवाज में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष शुक्रवार से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: चलिए एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती से चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

बागी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स के कुमार के बोल थे। मीत ब्रदर्स का संगीत था।

में गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला। कैसा रहा यकायकी, नाचो नाचो नाचो, नाचो, अरे घूम धूम फिर के जा, पाँव में जान जगा।

0: फिल्म आरआरआर का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज से थी विशाल मिश्रा, राहुल सिपलीगुंज के, रिया मुखर्जी ने बोल लिखे थे, एमएम क्रीम का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश जुन।

0: आ रही हैं विविध भारती पर।
1: सुन जरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में क्या

हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। ऐश किंग और शाशा तिरुपति की ये आवाजें थी। संगीतकार थे तनिष्क बागचे। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: आलम।
1: पी जयराज का पूरा नाम था पैडी जयराज। आपको ये बता दें कि उनका जन्म 28 सितंबर 1909 को करीमनगर में हुआ था, जो उस जमाने में हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था। पैडी जयराज जानी मानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखिका सरोजिनी नायडू के संबंधी थे। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की थी फिल्मों में सन 1929 में मूक फिल्मों के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से आपको बताएंगे पी जयराज के बारे में। पी जयराज के करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने मूक फिल्मों से लेकर मॉडर्न टाइम तक अनेक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों की भूमिका निभाने का कीर्तिमान पैडी जयराज के नाम है। यहां आपको ये भी बता दें कि संगीतकार नौशाद जैसे कलाकारों को मौका देने का श्रेय भी पी जयराज को जाता है। 28 सितंबर 1909 को निजाम स्टेट के करीमनगर में जन्मे पी जयराज का पूरा नाम था पैदी पाटी जयरूला नायडू। ये उनका आंध्र का नाम था। हैदराबाद में पले बढ़े, इसलिए उर्दू और दक्कनी पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और आगे चलकर ये उनके करियर में बहुत ज्यादा काम आई। आपको बता दें कि उनके पिता एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स देखा करते थे। पी जयराज की शुरुआती तालीम हैदराबाद के रोमन कैथोलिक स्कूल में हुई और उसके बाद तीन

0: साल के लिए उन्हें एक बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया गया, वुड नेशनल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में, जहां उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। इसके बाद पी जयराज पढ़े हैदराबाद के निजाम हाई स्कूल में। बीएससी करने के बाद उनकी तमन्ना थी कि वो नेवी में जाएं, लेकिन उनके बड़े भाई सुंदर राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजना चाहते थे। पी जयराज की खुद की भी यही इच्छा थी कि वो इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करें, पर परिवार ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। अब हुआ ये कि सन 1929 में पी जयराज अपने घर से विद्रोह करके मुंबई आ गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। दरअसल मुंबई में उनके हैदराबाद का एक दोस्त जे हॉस्पिटल में हॉस्टल में रहकर डॉक्टरी पढ़ रहा था। वो उसके पास आकर रुक गए। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल में एक महीने रहने की व्यवस्था हुई। पी जयराज को समुन्दर से बे इंतहा प्यार था, बस इसीलिए उन्होंने डॉकयार्ड यानी बंदरगाह में नौकरी कर ली। वहां दोस्त बने रंगिया के सहयोग से उन्होंने पोस्टर रंगने का काम भी किया। उन्हीं पोस्टरों की बदौलत पी जयराज पहुंच गए फिल्में बनाने के स्टूडियो तक। चूंकि बहुत ही मजबूत कदकाठी, बहुत ही नफासत से भरी भाषा, बहुत गजब का फिजीक, संवाद अदायगी में बड़ी कुशलता, तेलुगु थिएटर में काम करने का अनुभव, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि तलवार चलाने की कला तक उन्हें आती थी। जाहिर है कि फिल्म स्टूडियो में पहुंचते ही फिल्में बनाने वाले निर्माताओं को लगा कि ये लड़का तो बहुत काम का है। ये वो जमाना था जब डुप्लीकेट नहीं हुआ करते थे, और चाहे घोड़े पर दौड़ना हो, उछल कूद मचानी हो, चलती ट्रेन पर चढ़ जाना हो, ये सारे कारनामे अभिनेता खुद किया करते थे। ये वो दौर था जब एक जाबाज हीरो की निर्माताओं को सख्त जरूरत थी। फिल्म स्टूडियोज में आते ही जयराज को काम मिलने लगा। 30 का दशक था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था। सन 1932 में पी जयराज ने स्वदेशी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। मामा वरेरकर उनके आकर्षक शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और पी जयराज को उन्होंने अपनी पहली फिल्म में नायक की भूमिका के लिए चुन लिया। पर हुआ ये कि ये फिल्म बन न सकी। इस तरह से पी जयराज के करियर की गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले ही ब्रेक लग गया। पर पी जयराज को तो मुंबई में टिके रहना था। उन्होंने मुंबई के भाईखला में एक स्टूडियो में निर्देशक नगेंद्र मजूमदार के साथ सहायक निर्देशक की नौकरी ले ली। ये एक बड़ा मौका था, क्योंकि यहां पी जयराज ने न केवल सहायक निर्देशक के काम को समझा, बल्कि एडिटिंग और उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी को भी समझा। आगे चलकर पी जयराज फिल्मों का निर्देशन भी करने लगे। बतौर निर्देशक पी जयराज की पहली फिल्म थी प्रतिभा, जिसकी प्रोड्यूसर थी देविका रानी। अभिनेता के रूप में मजूमदार ने पी जयराज को अपनी फिल्म जगमगाती जवानी में अवसर दिया, जिसके नायक माधव काले थे। नायक को घुड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए पी जयराज ने मास्क लगाकर नायक के बदले में सारे स्टंट किए। ये मराठी फिल्म साहित्यकार मामा वरेरकर द्वारा निर्मित स्मार्कलिंग यूथ पर आधारित थी। इसमें जैबुन्निसा के साथ पी जयराज की जोड़ी काफी कामयाब रही। यंग इंडिया पिक्चर्स ने पी जयराज को 35 रुपए महीने के तनख्वाह, खाने और चार लोगों के साथ गिरगांव में रहने की सुविधा देते हुए नौकरी पर रख लिया। आगे चलकर पी जयराज को भारत और जर्मनी के संयुक्त रूप से सहयोग से बन रही फिल्म शिकारी में एक्टिंग करने का मौका मिला। इसकी शूटिंग हैदराबाद में हुई थी। इसके बाद उन्होंने पतित पावन फिल्म में काम किया, और यहां से आगे पी जयराज का करियर तेजी से बढ़ा। सुरैया के साथ उन्होंने 7 फिल्में की, हमारी बात, सिंगार, अमर कहानी, राजपूत वगैरह, ललिता पवार, शकीला, देविका रानी, नूरजहां और सितारा देवी जैसी अभिनेत्रियों के साथ पी जयराज ने काम किया।
1: राजू, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जरा अपनी तरफ तो देखो, कैसा फूल सा चेहरा।

0: तुम्हें हाथ में मिला दिया है। भगवान ने जीवन इसलिए नहीं दिया है कि इसे रो पीट कर काटा जाए। हम जो कुछ चाहते हैं सब तो हमें नहीं मिल जाता। मैं तुमसे कम दुखी नहीं हूं राजू। जिस तरफ निकलता हूं लोग उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं ये पापी है, इसने एक मासूम लड़की को झूठा सहारा देकर कहीं का ना रखा, ये उसका कातिल है। ये सब कुछ हमें और कौशल्या को सुनना पड़ता।
1: यहाँ सुनते हैं फिल्म सिंगार का ये गाना।

सन 1931 में आलम आरा के साथ बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो पी जयराज ने बदलते हुए दौर के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। उनकी पहली बोलती हुई फिल्म थी शिकारी। 1932 में प्रदर्शित इस फिल्म में पी जयराज ने एक बौद्ध भिक्षु की भूमिका निभाई थी। जब फिल्में बोलने लगी तो अभिनेताओं को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे। पी जयराज को इस दौर में गाना भी सीखना पड़ा था। फिल्म हमजोली में पी जयराज और मलिका तरन्नुम नूरजहां की जोड़ी नजर आई थी। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय ने अपनी कंपनी की फिल्म भाभी के लिए पी जयराज को साइन कर लिया और इस तरह मुंबई में पी जयराज की कामयाबी का परचम लहराने लगा। फ्रेंड्स ऑस्टिन फिल्म भाभी के निर्देशक थे। ये फिल्म बेहद कामयाब रही थी। 80 हफ्ते तक कलकत्ता के एक थिएटर में ये फिल्म चलती रही थी।

आपको बता दें कि पी जयराज ने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। वैसे पी जयराज ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें से तकरीबन 160 फिल्मों में उन्होंने नायक की भूमिका निभाई। सन 1956 में पी जयराज ने फिल्म हातिम ताई में काम किया था।

जैसा कि हमने आपको बताया, पी जयराज राष्ट्रीय और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सन 1960 में उन्होंने फिल्म लाल किला में काम किया, 1961 में रजिया सुल्ताना,

जयराज ने बाद के जमाने में कुछ चरित्र भूमिकाएं की और फिल्मों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। सन 1975 में आई फिल्म शोले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म डॉन में उन्होंने जो किरदार निभाया था वो था दयाल का किरदार। सन 1970 फिल्म जीवन मृत्यु में पी जयराज ने रॉय की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में पी जयराज बने थे डॉक्टर कपूर। 1981 में फिल्म क्रांति में उन्होंने महाराजा लक्ष्मण सिंह की भूमिका निभाई थी। बतौर नायक उनकी आखिरी फिल्म थी खूनी कौन मुजरिम कौन। अब आपको बताएं कि बतौर निर्माता पी जयराज ने कौन कौन सी फिल्में बनाई। पी जयराज ने भारत भूषण, नरगिस और अपने खुद के अभिनय के साथ एक फिल्म लॉन्च की जिसका नाम था सागर। सन 1939 में पी जयराज ने अपने घनिष्ठ मित्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के कहने पर सावित्री नाम की एक युवती से विवाह किया था। सावित्री के कन्यादान की रस्म खुद पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी। पी जयराज की 5 संतानें थीं, 2 बेटे दिलीप राज और जय तिलक और 3 बेटियां जयश्री, दीपा और गीता। उनके सबसे बड़े बेटे दिलीप राज एक्टर बने। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म शहर और सपना में उन्होंने एक्टिंग की थी। सन 1950 के जमाने में पी जयराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। सन 1982 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पी जयराज एक कड़ी थे, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मूक फिल्मों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक लगातार काम किया और जबरदस्त काम किया। बाद के जमाने में वो फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं और कुछ छोटे मोटे रोल निभाया करते थे। जब सेहत ने साथ देना छोड़ दिया तो उन्होंने फिल्मों का दामन छोड़ दिया। 11 अगस्त 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। पी जयराज एक पुल थे, मूक फिल्मों से लेकर आज की फिल्मों के बीच का पुल।

0: कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सिंगरौली जिले में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने बीते दिनों बैठक ली। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनभागीदारी और पूरी गरिमा के साथ आयोजित किया जाए। इस अभियान के दौरान तिरंगा रैलियों सहित विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना से जोड़ा जाए। उन्होंने जिले के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने उपखंड अधिकारियों और SDOP पुलिस को अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तिरंगा रैली के समय और मार्ग निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय मुख्य तिरंगा रैली 14 अगस्त को चून कुमारी स्टेडियम नगर निगम क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयुक्त नगर पालिक निगम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विकासखंड स्तर पर आज जियावन और 13 अगस्त को चितरंगी और बरगवा में तिरंगा रैलियां आयोजित की जाएंगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरवाह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदन, स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। सिंगरौली जिले में ग्राम पंचायतों के विकास में ग्राम सभा और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं जिले में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी मिल रही हैं। इसी श्रृंखला में चितरंगी के सामुदायिक भवन में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला में राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राधा सिंह ने

0: भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास जनता की वास्तविक सहभागिता और ग्राम सभा की सहमति से ही होना चाहिए। एनसीएल के केंद्रीय चिकित्सालय सिंगरौली और एनएससी जैन सामुदायिक केंद्र मोरवा में मेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स और नेत्र रोग से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं दी। लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी इस मौके पर वितरित की गई। करीब 150 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। नगर निगम सिंगरौली की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पात्र रेहड़ी पटरी और फुटपाथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वार्ड क्रमांक 18 स्थित आवासीय परिसर केंद्रीय कर्मशाला जयंत के समीप एक विशेष शिविर लगाया गया। इस शिविर में कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका नियमानुसार परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चितरंगी पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत 10,40,000 रुपए बताई गई है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक सिंगरौली सियाज केएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के नेतृत्व में गठित टीम ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार 6 आरोपियों और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सिंगरौली में प्रशासन ने विद्यालयों की व्यवस्थाओं और बच्चों की सुविधाओं को लेकर भी सख्ती दिखाई है। कलेक्टर गौरव बैनल ने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिद्धि कला का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में बच्चों से सफाई कार्य कराए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित प्रधानाध्यापक की एक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में परिसर की साफ सफाई अनिवार्य रूप से वॉश ऑन व्हील के माध्यम से सफाई मित्रों द्वारा ही कराई जाए। कक्षाओं में लगाए गए स्मार्ट स्क्रीन बोर्ड बंद पाए जाने पर भी कलेक्टर ने असंतोष जताया और उन्हें शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर शासकीय मेडिकल कॉलेज सिंगरौली के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने की पहल की गई है। इस मेडिकल कॉलेज परिसर में एक आधुनिक एक्रेलिक बास्केटबॉल कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, एक बिलियर्ड्स कक्ष, 2 टेबल टेनिस टेबल और 3 बैडमिंटन कोर्ट विकसित किए जाएंगे। सिंगरौली जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। श्रोताओं, समय है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी सुनने का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं ये सारंगी वादन साबरी खान का। राग है विलास खानी तोड़ी और रचना एक ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप साबरी खान से संगीत वादन सुन रहे थे, राग था विलास खानी तोड़ी। और आइए अब सुन लेते हैं ये संदेश।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
0: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। आइए सुनते हैं राग देसी तोड़ी। तबले पर संगत की है अनिंदु चटर्जी ने।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी, और इसी क्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग था देसी तोड़ी और तबले पर संगत की थी अनिंदो चटर्जी ने। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। इस कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। पथरिया से ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है नरेन नीताम और कुसुम नीताम की। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी की व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है। और ये पत्र है धर्मश्री मंगलधाम कॉलोनी सागर से श्याम रेखवार, विक्रम, बादल, विनय, लक्ष्मी, खुशबू, वंदना, विराज, कीर्तिका, टक्कू, भूमिका और दक्ष का। बजरंग रेडियो श्रोता संघ बंडा बेलई जिला सागर से ये पत्र आया है। लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रेखवार, हल्ली लल्लू, ऋषि रेखवार का। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत साजन का घर फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

साजन का घर इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। और श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज सुबह 11 बजे से की जाएगी। हमारा फ़ोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फ़ोन कॉल्स का आज सुबह 11 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और ये अगली पसंद के लिए हमें पत्र लिख भेजा है यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और जितेंद्र मालाकार ने। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से ये वर्ष फरमाइश हमें मिली है रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल की। कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश और जीविका दले। पुनावले पुणे से वर्ष फरमाइश आई है अजय सोनबने, करिश्मा सोनबने, अविका और विशाखा सोनबने की। तो आइए इन सभी की फरमाइश को पूरा करते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं जीत फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने जीत फिल्म का ये गीत सुना। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोतागण हैं। ये व्हाट्सएप फरमाइश आई है मोताला महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और गौरी सुरलकर। महबूबपुरा सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, बेगम सबीना खत्री, मोहम्मद जैद खत्री, प्यारी बेटी मुनीरा और मोहम्मद इकबाल खत्री की व्हाट्सएप फरमाइश मिली है। और ये पत्र है नेपाल पैलेस सागर से। लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा शिवांशु, रामदास, अवधेश, यश सक्सेना, प्रेम नारायण, रमाकांत दुबे, प्रमोद सैनी और सुजीत का। एक पत्र और है जो हम तक पहुंचा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं बेटा फिल्म का ये गीत।

बेटा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। और श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस सप्ताह कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज सुबह 11 बजे से की जाएगी। हमारा फ़ोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का आज सुबह 11 बजे से। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, नाम फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं पंकज उदास और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने के ख्वाहिश

पक्षबंद श्रोतागण हैं, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खूरबाल, कमला रानी, गीतिका खूरबाल, भानु प्रकाश और सुमन, शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन, फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी, दीवांशी खेड़ा, वाणी, आरबी खेड़ा और जीवन बूक, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरा गुरनूर सिंह की व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है। तो आइए आप सभी की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, नाम फिल्म का ये गीत।

नाम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करें

0: करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
1: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
0: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी जी जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
0: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
1: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
0: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
1: जी
0: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
1: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
1: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
0: जी तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
1: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा, और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
5: रॉलेट एक्ट वापस लो,
6: रॉलेट एक्ट
5: वापस लो,
6: रॉलेट

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो। ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
1: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: की
1: जय।
0: भारत माता की।
2: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
3: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का

0: त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
1: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
1: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
3: रोलेट एक्ट वापस लो।
4: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
4: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
1: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
2: मारो,
1: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
2: किचलू को
3: रिहा करो।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
0: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। देख, ये सबक काफी है।
0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
3: मासी, मासी मेरी लत सीधे कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधे
4: कर दिया, कर दिया।
5: Ella

0: Mari. Pani. Pani.
1: Pani. Pani. Pani. Pani. Pani. Pani. Pani. ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੀ ਲਹੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
2: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डार।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
5: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
2: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की

0: घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
1: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
2: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
3: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
4: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
2: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
1: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छः एक कम छः,
3: छः एक कम छः,
2: छः दुनी बारह,
3: छः दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छः ती अठारह,
3: छः ती अठारह,
2: छः चौक चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं? क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा? मैं खेलूं भी, पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ, तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा, अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कर...

0: मतलब?
1: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
0: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
1: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
0: पक्का?
1: पक्का।
0: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
1: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
0: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
1: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
2: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
3: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश असीस कौर की आवाज है, जानी का लिखा ये औगार फिल्मी गीत है और बी प्राक का संगीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
4: सिद्धांत महादेव की संगीत निर्देशन में हम आपको मोती सुल्तानपुरी का लिखा एक औगार फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं, आवाज जावेद अली की।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार है, सदन चलना चाहिए।
0: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान

0: प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर एक के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। राज्य के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु हो गई और दो घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम। बस कुछ ही पलों में

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज अभिनेता सुनील शेट्टी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में हमने उन्हीं की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: करते हो।
1: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये गीत सुना। मुख्य स्वर अभिजीत का था और फिल्म का नाम था धड़कन। आइए सुनते हैं पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम मोहरा, गीतकार इंदिवर, संगीतकार विजू शाह।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का गीत। गीतकार थी माया गोविंद और संगीतकार थे अनु मलिक। और ये आवाजें हैं मीका सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम है दे दनादन। इशात कामिल के बोल, प्रीतम की धुन।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल। फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी और गायक स्वर हिमेश रेशमिया का।

ये आवाज थी हिमेश रेशमिया की, और आइए अब सुनते हैं अनुमलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज रूप कुमार राठौड़ की। फिल्म का नाम है बॉर्डर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत नीति मोहन और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है किक।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में समीर अनजान का लिखा गीत सुनिए, आवाजें नीरज श्रीधर और साथियों की, फिल्म का नाम हाउसफुल 2।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सेम भट्ट की आवाजों में। फिल्म का नाम है मर्डर 2। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio.

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के कार्यक्रम सुरीला सफर का। क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है हमने और यही हो भी रहा है। हमारे श्रोता रेडियो की उस ओर बैठे हैं हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में कोई भी रिश्ता तभी कायम रह सकता है जब जहाँ वहाँ कुछ संवाद हो, है ना? हाँ ठीक है, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि संवाद से ज़्यादा आपसी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन संवाद के बिना जीवन बिल्कुल नीरस लगता है। क्यों? जैसे कि सुरीला सफ़र में हम आपके लिए आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे करते हैं। सोचिए अगर हम इधर बात न करें तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना? और उधर से आप अपने संवाद, अपनी बातें, अपने विचार हम तक न पहुंचाएं तो ये कार्यक्रम कितना अधूरा होगा। इसलिए जीवन में संवादों का महत्व बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें किसी भी गीत में आरंभ में या बीच में कहीं भी छोटे छोटे संवाद हमें सुनने को मिल सकते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते जब बीच में हमें कोई छोटा सा संवाद सुनने को मिलता है ना, तो पता है क्या होता है, एक पल के लिए हम उस संवाद को सुनने लग जाते हैं कि अरे ये अभिनेता या ये अभिनेत्री क्या कह रही है, ये गायक या ये गायिका क्या बोल रही है बीच में। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। तो वो संवाद हमें बहुत कुछ कह जाते हैं गीतों के जरिए कि इस गीत में ये संवाद किस लिए रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। और यकीनन जब आज हम सुरीला सफर पर निकल चुके हैं तो संवाद करते रहेंगे, है ना? आपस में बातचीत हम करते रहेंगे। हमारी इबारत भी आपने पढ़ ली है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत को आपके सामने रख देते हैं। आज हमने लिखा है कि रिश्तों में संवाद बनाकर रखिए, संवाद हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आज के गीत केवल पुराने गीत समझ कर मत सुनिएगा, इनमें छिपी बातचीत को सुनिएगा। किसी में प्रेम मिलेगा, किसी में बिछड़ने का दर्द, किसी में शिकायत, किसी में उम्मीद, किसी में रिश्तों की मिठास और किसी में जिंदगी की सच्चाई। और शायद किसी संवाद को सुनते सुनते आपको भी अपने जीवन का कोई संवाद याद हो आए जो आपने किसी खास व्यक्ति से किया था, है ना? कोई व्यक्ति याद हो आए जिसे बहुत कुछ कहना था लेकिन आपने कहा नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम की

0: तरफ से एक छोटी सी बात यही है कि रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाकर रखिए, उनके बीच संवाद कभी बंद मत होने दीजिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते जीवित रहते हैं, और जहां रिश्ते जीवित रहते हैं वहीं जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत गीत बन जाती है। तो इसी एहसास के साथ सुनिए आज का ये कार्यक्रम, और हाँ, इन गानों में आने वाला संवाद शायद आपको भी अपने जीवन की कोई कहानी याद दिला दे। तो समझ आया कुछ कि आज कैसे होंगे गीत? हमारे श्रोता तो समझ चुके हैं कि आज के गीतों में आरंभ में या बीच में यानी पूरे गीत में कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा कोई ना कोई संवाद जरूर होगा, है ना? तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर। बताइएगा इस गाने में जो संवाद बोले जा रहे हैं वो फिल्मी पर्दे पर किस अभिनेता और अभिनेत्री ने किए हैं?
1: अरे देख रहे हैं?
2: तो देखने दो।
1: जल भी रहे हैं?
2: अरे तो जलने दो।
1: खुली सड़क है बाबा।
2: तो क्या हुआ भाई?
1: तो हट जाए
2: हो जाए, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।

वाह, हमारे श्रोता ने फटाफट जवाब भी दे दिया है कि ये है ऋषि कपूर और नीतू सिंह पर्दे पर। फिल्म का नाम भी लिख दिया है आपने, खेल खेल में।

0: क्या है ये दुश्मन जमाना।
1: अरे सुन।
0: हाँ बता।
1: सबको मिलता

अभी आपने सुना फिल्म खेल खेल में का ये गाना युगलस्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी। गुलशन बावरा की रचना थी राहुल देव बर्मन की धुन। जी तो इस गाने के आरंभ में जो संवाद कर रहे थे आपने बिल्कुल सही कहा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। और वैसे देखा जाए तो किशोर कुमार और आशा भोंसले ये संवाद कर रहे थे गाने के तौर पर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप रिश्तों की गहराइयों और इसे जीवंत करने वाले संवाद को लेकर आई हैं। आज का संवाद सच में सुंदर होना चाहिए। रिश्ते भावनाओं की वो नाजुक डोर है जिन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल के संवाद से संजोया जाता है। संवाद किसी भी रिश्ते की वो जीवनदायिनी सांस है। शब्द रिश्तों के वो मोती हैं जिन्हें यदि सही समय और सही आदर के साथ पिरोया जाए तो वो जिंदगी को एक बेहद खूबसूरत माला बना देते हैं। संवाद ही वो

खुशबू है जो रिश्ते की गुलशन को हमेशा महकाए रखती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में हम ऐसे पुराने गीतों से रूबरू होंगे जिनमें जिंदगी से जुड़े दिलचस्प संवाद हैं। आपकी इस मेहनत को दिल

0: नहीं देती मगर बांधे रखती है। रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं, बात करते रहने से जीवित रहते हैं। कभी दो मीठे बोल मन की दूरी मिटा देते हैं तो कभी एक छोटी सी शिकायत रिश्ते में छिपी मोहब्बत को सामने ले आती है। संवाद बंद होते ही रिश्तों में खामोशी उतरने लगती है और खामोशी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए, उनमें बात बनाकर रखिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते भी सांस लेते रहते हैं। आज सुरीला सफर में ऐसे गाने हो सकते हैं जिनमें प्रेम, शिकायत, पुकार, सवाल जवाब, मिलन, विरह और अनकही बातों का संवाद होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी संवाद समस्या ये है कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि उसे उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। संवाद यानी बराबर बोलना और संवाद यानी बराबर सुनना भी। जिस बातचीत से वाद विवाद की स्थिति न पैदा हो वही सही अर्थों में संवाद कहलाता है। आपसी रिश्तों की नाजुक डोर को संभालने के लिए आपस में संवाद होते रहना बहुत जरूरी है। आजकल आपसी रिश्तों में जो खटास या अबोलापन आ गया है उसका मुख्य कारण संवाद का न होना ही है। संवाद करते रहने से दो अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति भी आपस में अच्छे मित्र बन सकते हैं। बहुत सुंदर विचार आप सभी के। जी तो हमारे श्रोता ने कहा कि आप हमेशा दो ही सवाल क्यों करती हैं, आप भी हमसे ज्यादा संवाद कीजिए ना इस कार्यक्रम में। तो चलिए आज हम दो की जगह बहुत सारे सवाल आपसे कर लेते हैं। तो क्या पूछें बताइए आप, कैसा कैसा सवाल चाहते हैं आप लोग कि हम आपसे क्या सवाल करें? भाई हम तो जब आज कार्यक्रम संवाद पर लेकर आए हैं कि इन गानों के बीच में चाहे छोटा सा संवाद सुनने को मिलेगा लेकिन हमारा ध्यान जरूर खींचता है वो संवाद अपनी ओर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में या आपके लिए संवाद का असली अर्थ क्या है, सिर्फ बात करना या एक दूसरे को समझना? बताइएगा कि आप जब किसी से संवाद करते हैं, घर परिवार, रिश्ते नाते, कहीं भी, तो क्या अर्थ होता है उसका? किसी को समझने के लिए संवाद करते हैं या सिर्फ आपका उद्देश्य एक बात किए रखना कि हाँ हमारी बातें होती रहनी चाहिए, ऐसा कोई विचार आपके दिलो दिमाग में रहता है? क्या रहता है किसी संवाद, जब आप किसी से संवाद करते हैं तो इसका जवाब कम से कम शब्दों में आपको देना है। ज़्यादा शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं को हमें शामिल करना होता है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर की रचना, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम। बताइएगा कौन अभिनेता किस अभिनेत्री से ये बात कह रहे हैं?
1: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने

जी तो आप बताइएगा कि पर्दे पर कौन से अभिनेता ये गीत गा रहे थे और किस अभिनेत्री को ये बात कह रहे थे। आपके लिए बहुत सरल सवाल पूछ रही हूँ आज मैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप संवाद विषय के साथ हम सभी के साथ संवाद करने वाली हैं, अच्छी बात है। संवाद सिर्फ बोलकर ही नहीं लिखकर भी किया जा सकता है, जो हम सभी इस पेज पर अभी कर रहे हैं। संवाद मतलब संवाद यानी समतोल बातचीत, जो बात मुंह के तराजू से तौली जाती है, अच्छा, और तोल मोल से बोलने पर या संवाद करने पर कोई बिखराव की स्थिति भी नहीं होती, जिसके कारण आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। संवाद रूपी डोर हमें दिखाई नहीं देती, मगर एक दूसरे से बांध जरूर देती है, फिर वो घर परिवार हो या मित्र मंडली। जिंदगी सेहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार भरे संवाद में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिख दें कि आज आपकी आवाज अच्छा हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, हमें भी इंतजार रहता है कि हमारे सभी श्रोता हमारे साथ सुरीला सफर के इस यात्रा पर निकल जाए, तो आप भी निकल पड़े हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम संवाद से सजने वाली है। संवाद जीवन का वो सबसे सुंदर जरिया है आपसी संबंधों को बनाए रखने का, पर आज के इस युग में संवाद की जगह केवल व्हाट्सएप ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखी है। पर फिर भी फोन पर अथवा सामने वाले बातचीत करते हैं, उसका अपना एक अलग ही आनंद होता है और उसमें हमें प्रेम आत्मीयता और अपनापन का एहसास होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि संबंधों की सबलता में संवाद सदैव सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। सामयिक हो या सर्वकालिक, संपर्क सूत्र ही सामाजिकता का सुदृढ़ स्तंभ है। सकारात्मक और सृजनशील संवाद समय सापेक्ष है मगर सुखांत होते हैं। सीमित संसाधनों में भी सर्वमान्य सिद्धांत संवाद ही है। अति आशा की अपेक्षा संवादों में विवाद की जड़ है। समस्या समाधान का एकमात्र विकल्प संवाद है, विवाद नहीं। संबंधों को संबोधित करती हुई सुरीला सफर का ये कार्यक्रम हमें आज बेहद अच्छा लगेगा, ऐसा आपने मेरी तारीफ में फिर दो पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा प्रणाम है, आज की इबारत रिश्तों को संवाद के जरिए जोड़ने वाली है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सफर में बातचीत या कहें संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जान या समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूसी, या फिर आने वाली सुखद कल्पनाओं की जैसे साकार रूप में देखना है, ये सभी बातें जीवन को साकार करते संवाद ही है, जो हर रूप में ढलकर बातों को सजीव करते हैं। और यही बातचीत जीवन का मजबूत स्तंभ है। एक दूसरे से परिवार में, आसपास, समाज में, दिन दुनिया में सकारात्मक संवाद हम सभी को जोड़कर रखता है और हमें ये संवाद बनाए रखना चाहिए। जी तो अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पिछले सवाल का जवाब दिया है कि नहीं, अभी हमें देखने पर पता चलेगा कि क्या आपने सोचा है कि संवाद हम किसी से बात करने को लेते हैं या किसी को समझना भी संवाद का एक तरीका होता है। तो बताइएगा आप अपने जीवन में जब संवाद करते हैं और सामने वाले से जब संवाद सुनते हैं तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का संवाद हम एक दूसरे से किया करें। बताइएगा अपने दोस्तों से, घर वालों से, बच्चों से किस तरह के संवाद आपके होते हैं। एक माता पिता किस तरह का संवाद अपने बच्चों से करता है और करना चाहिए, इस पर भी हम बात कर सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनते हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम यादों की बारात।

जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?

जी हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में बातचीत या कहीं संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जाने समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूस भरी या फिर आने वाले सुखद कल्पनाओं के जिसे हम साकार रूप देना चाहते थे, ऐसी बहुत सी बातें हम संवादों के जरिए कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद केवल बातचीत करने का या आपसी बोलचाल ही नहीं है, ये दिल को दिल से जोड़े रखता है। संवाद हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रेम विरह शिकायतों से जीवन के सत्य जो है जीवंत बने रहते हैं। ध्यान रहे कि संवाद जारी रखने वाली स्थिति में भी जो मौन की गहराई और शब्दों की पवित्रता के माध्यम से रिश्तों की डोर जुड़ी रहती है, संवाद प्रेम को प्रकट करता है और रिश्तों में दूरी नहीं आने देता। विरह में संवाद की तड़प होती है, यादों के जरिए संवाद जारी रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रोज ही सावन आया, घटा छाई, सुहाना मौसम, हरियाली, बस इन्हीं पर संवाद हो रहा था। आज आप आए और आपने भाई बहन के संवाद सुनने का इंतजार है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने इस कार्यक्रम को आपके साथ अंत तक सुनना है और आज की इबारत बहुत दिलचस्प लिखी है। इसमें गानों का संग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें सुनकर और महसूस करके अधिक आनंद आएगा। हमारे रिश्तों में मधुर मिठास घोलने वाले गानों को सुनने से आसपास के वातावरण में संगीत गूंजने लगता है और जो भी हम कहना चाहते हैं वो सब गीतों के माध्यम से हम कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बहुत उत्साहित हूँ रिश्तों में संवाद बनाए रखने के लिए, इस महत्व को समझाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते मजबूत रखने के लिए संवाद होना बेहद जरूरी है। आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र उपाय है। संवाद न होने पर छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। संवाद वाले गीत बहुत से हैं पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है श्रोताओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। हम दिन रात अपनी जिंदगी का गीत गाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते निभा तो रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं, परिवार, भागदौड़, लेकिन जिंदगी के बीच में कभी कभी कोई संवाद आ जाता है। किसी अपने की कही भी कोई एक बात, माँ की कोई सीख हमें मिल जाती है, पिता की कोई डांट मिल जाती है, जीवन साथी का कोई सवाल मिल जाता है, बच्चे की कोई मासूम बात सुनने को मिल जाती है और हम

अचानक रुक जाते हैं, सोचते हैं क्या मैं सच में यही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता था। तो इसीलिए फिल्मी जो गाने हैं, इनके बीच में आने वाला संवाद भी केवल ये मनोरंजन नहीं है, ये हमें ठहरने का एक अवसर देता है। हाँ, कि क्या कहा जा रहा है इस गीत में जो नायक और नायिका एक दूसरे से कह रहे हैं। तो यही इसलिए आज हमने इन गीतों को चुना, ताकि हम एक पल के लिए ठहरें, कुछ सुने, कुछ समझें, कुछ सोचें कि रिश्तों में संवाद कितना ज़रूरी है। और इसलिए इन गीतों के बीच आने वाले संवाद एक बहुत बड़ी सीख हमें दे जाते हैं कि रिश्तों में केवल प्यार होना काफ़ी नहीं है, प्यार को शब्द देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। बताइए किस फिल्म का गाना है और पर्दे पर कौन अभिनेता और कौन नायिका हैं। इस गीत में भी आपको संवाद सुनने को मिलेंगे, है ना। और बताइएगा कौन ये संवाद कह रहा है किसे।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी हमारे श्रोताओं ने कहा कि ये फिल्म आंधी का गीत है और इसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन आपस में संवाद कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा आपने। और हम आपको बता दें आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी, गीतकार जो गीतकार थे गुलजार साहब थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डायलॉग वाले गीत से सजी हुई सुरीला सफर की संगीतमयी सफर में हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संवाद जरूरी नहीं मुंह से बोले, मगर आपको किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आंखें चेहरे के भाव बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह देते हैं। और आपने सही कहा, रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है। मुझे भी कुछ कहना है, पहले आप शायद ये गीत शामिल हो सकता है। वैसे हाँ, आपको बता दें हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें संवाद है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का एक समय जो है निश्चित है, तो हमने उसी अर्थ में हमने जो गाने चुने हैं, आपके गानों से हमारे गाने कितना मेल खा रही ये आप देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई अन्य गानों का जिक्र भी किया है जिनमें संवाद हमें सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो फेसबुक खोलने से पहले अच्छा मुझे याद किया आपने और पोस्ट देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज भगवान जी से शायद कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। गीतों में जो बात होगी तकरार होगी वो तो होगी, पर आप जो कुछ बातें करेंगी, दो प्रश्न करेंगी, उनके बहुत सारे उत्तर भी देने होंगे। अरे तो आज आपने इतना हल्का क्यों मांगा, बहुत कुछ मांगना था आपको, है ना। ये कार्यक्रम तो रोज़ होता है और इस कार्यक्रम के जरिए तो आप हर वक्त हर किसी उद्घोषक से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो गानों में थोड़ा सा अलग हमें सोच मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि इन दिनों झूलों और सावन पर कार्यक्रम ज़्यादा केंद्रित हमें सुनाई दे रहा है, आपने कुछ थोड़ा इसको बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से बिल्कुल साफ है कि आज के गीतों का केंद्र संवाद है, यानी ऐसे पुराने गीत जिनमें दो लोगों के बीच बातचीत, सवाल जवाब, मन की बात, शिकायत, प्यार या कोई अनकहा एहसास है, हमें कुछ गीत समझ आए। आपने भी कुछ गीतों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीच में चल रही मीठी बातचीत है तो रूठना मनाना भी है इन गानों में, बल्कि प्यार है, गहरा करने का बहाना भी है। एक तरफ से शिकायत है, दूसरी तरफ मनुहार है, और इस तरह से

जो गीत पिरोए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूब लड़ लो झगड़ लो लेकिन बातचीत बंद नहीं करा करो, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का निदान होता है। एक श्रोता ने कहा है कि सफर में आप काफी समय बाद आई हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो सफर में आते ही रहते हैं और आप हर दिन एक न एक सफर तो तय करती हैं ना अपनी जिंदगी का। एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार के हल निकल सकते हैं, मनमुटाव दूर हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों को संवाद से जोड़कर जरूर रखिए। और एक श्रोता ने कहा है कि हमारे प्रांत बिहार में लोग संवाद करते हैं जिसे हम बोलचाल की भाषा में बतरस या बदकुचन कहते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है सुबह के दिनचर्या से, महंगाई से, बच्चों और घर की समस्याओं, शारीरिक तकलीफ से, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात चली जाती है और वहीं संवाद फिर बदकुचन पर चली जाती है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग गया तो वो मुंह बनाकर उठकर चल भी देता है। हो सकता है दो तीन दिन बाद फिर किसी से बात नहीं करें, मिले भी नहीं, पर इस तरह जो बदकुचन होता है उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो हम भी आपसे जब संवाद कर रहे हैं तो ये पूछना हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा संवाद रहा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए। मतलब आपने किसी से कभी कोई अच्छा संवाद किया होगा या आपको लगा होगा कि नहीं मैंने ज़रूरत से ज़्यादा किसी को गलत कह दिया है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई संवाद जिसे आप नहीं भूल पाए हैं, बस उस घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। और हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कभी ऐसा कोई संवाद आपने किया हो कि आपके कुछ शब्दों ने आपके और किसी अपने के बीच की दूरी कम कर दी हो, बड़ा नहीं दी हो बल्कि कम कर दी हो। याद कीजिए वो घटना, वो शब्द, वो लम्हे जब आपको लगा होगा कि हम बहुत दूरी पर थे लेकिन जब हमने प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, आपस में प्यार भरी संवाद की अदायगी की, तो हम कहीं थोड़ा करीब आ गए। सुनते हैं राजेश रोशन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं चुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो,

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने कहा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये गाना देवानंद साहब ने हेमा मालिनी जी के लिए गाया था फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है कि देवानंद है पर्दे पर और हेमा मालिनी से वो ये बात कह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आप कुछ नया सब्जेक्ट लेकर ही आती हैं जो मनोरंजन भी करता है और एक संदेश भी देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद बहुत जरूरी है लेकिन बस संवाद विवाद में नहीं बदलना चाहिए और अपनी बात कहना सही है पर सामने वाले की भी तो सुनना जरूरी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे। आप हूँ शीतल खोए।

0: आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं और सुनते हैं अमिताभ बच्चन के साथ लता मंगेशकर जी की आवाज। फिल्म का नाम है सिलसिला, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी का संगीत। आपको बताना है, बिल्कुल सीधा साधा जवाब देना है कि पर्दे पर किस नायिका को ये बात कही जा रही है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की, फिल्म का नाम था सिलसिला। दोस्तों, कहते हैं कि कितने ही रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच प्रेम नहीं था। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो बहुत था लेकिन वहाँ संवाद नहीं था। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बात नहीं करते थे, मन में शिकायतें थी लेकिन कहते नहीं थे, दर्द था लेकिन बताते नहीं थे, समझाते भी नहीं थे। इसलिए पुराने फिल्मी गीतों में जब अचानक किसी कलाकार की आवाज़ आती थी तो दर्शक केवल गीत नहीं सुनता था बल्कि उस किरदार के साथ उस पल को जीने लगता है ना। कई बार फिल्मों में होता है, आज भी होता है, जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो उस किरदार को जीने लग जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है। और अक्सर हम उस कहानी को अपनी कहानी समझकर या अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनना पसंद भी करते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतकारों ने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं जिनको अभिनेता अभिनेत्री द्वारा संवाद करते करते गाया गया। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। संवाद होना बहुत जरूरी होता है, आज के गाने भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, एक श्रोता ने, जब हमने आपसे पूछा था संवाद के बारे में सवाल, आप लिखते हैं कि मुझे अपने पापा से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो थोड़ा भूलने लगे हैं, तो जब हम उनसे संवाद करते हैं उन्हें याद आ जाता है, नाम याद आने लगते हैं, पुरानी बातें वो याद करने लगते हैं, फिर वो किस्से सुनाने लगते हैं और डॉक्टर ने भी उनसे बहुत बात करने को कहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की बारात फिल्म का गीत आपने तारिक और जीनत अमान के बीच का संवाद था वो सुनवाया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, जब बात संवाद पर आ ही गई है तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात सिलसिला फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। अरे, हमने तो आपको सुनवा भी दिया है। कहाँ हैं आप, सुन लिया ना आपने, जवाब दीजिएगा हमें, हाँ या ना में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अकेले ही ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, वो भी आपकी संवाद अदायगी के साथ। मैं तो बचपन से रेडियो सुन रही हूँ जब भी समय मिलता है, मगर कुछ समय से मेरी बेटी भी सुनने लगी है, उसे आपकी आवाज़ पसंद है, मुझे भी, तो कहती है जब आप आए तो मुझे बताना, आज वो कॉलेज नहीं गई और मैं उसे बताऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा। अरे, इतना प्यार, इतना स्नेह है ना सर माथे पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद एक अद्भुत शैली है, अपने आप से बात करना भी एक प्रकार का संवाद ही तो है। मैं जब 20 साल का था तब भीतर एक बात मेरे मन में आई, उद्भव हुई कि गुलाब जामुन में सुख नहीं है, फिर अंदर ही संवाद हुआ कि सुख सबको मिल रहा है तो किधर से आ रहा है। इस तरह साबित करने का मौका कुछ महीने बाद संवाद करने का मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हद से ज्यादा संवाद भी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद सदा मधुर और मीठे हो तब तो अच्छे है, वरना चुप ही सही है। वैसे जहां प्रेम और दिल मिले होते हैं वहां अधिक संवाद की आवश्यकता होती भी नहीं है, वहां मौन में भी दिल की बातें दिल से हो ही जाती हैं। एक श्रोता ने कहा, संवाद हमेशा प्यार से होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार। और एक श्रोता लिखती है कि मैं मेरे मैरिज से पहले एक बार मैं और मेरी होने वाली वाइफ घूमने गए थे। एक गार्डन में बैठकर मैंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया। मुझे अचानक ख्याल आया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने कहा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही?

0: हैं तो उन्होंने बताया कि आप ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का आपने मौका दिया ही नहीं, तो क्या बोलूं। फिर हम दोनों बहुत हंसे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो जिंदगी में संवाद बहुत है, संवाद वही होना चाहिए जिसमें सुगंध और प्यार हो, तभी मजा आता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं संवाद गीतों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें अभी तक लगभग 30 गीतों के नाम शामिल हो चुके हैं, क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में हम दर्शन करने गए हैं धर्मपत्नी के साथ, और वहां से आपके सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, और आप पवित्र गुफा से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, बाबा अमरनाथ की सभी को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शिव हरि का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें, फिल्म का नाम चांदनी।
1: चांदनी

ना देख लिया। बिन पूछे ये काम किया तुमने।

जी तो सुरीला सफर कार्यक्रम में बस आज यही तक। इतना ही कहेंगे कि सहमति असहमति के बीच भी हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से संवाद करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सर फिल्म का ये गीत है

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में कुमार शानू का गाया फिल्म सर का ये गीत था। चांदनी फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे ने गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, शिवहरी का संगीत है।

0: सुरेश वाडकर के गायब फिल्म चांदनी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम

फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भोपाल से विदिशा के बीच 4 लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे।

0: जिले में लोगों को पता चले किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ी है, सोशल वेलफेयर की स्कीम से किस तरह सरकार आगे गई है, उस सब के भी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
1: कैबिनेट ने रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज लोकभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। डॉ. यादव ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कामों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर भी राज्यपाल से चर्चा की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर जानकारी का आदान प्रदान हुआ। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि देश में अब तक 10,33,00,000 से ज्यादा किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। सरकार के मुताबिक किसान आईडी से किसानों को कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और ऋण वितरण जैसी योजनाओं को जोड़ने में मदद मिल रही है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी होंगी। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योग जगत को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये सुविधा विदिशा जिले के बासौदा, शाजापुर जिले के शुजालपुर और आगरमालवा जिले के सोयत कलां के शासकीय महाविद्यालयों में मिलेगी। इससे इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने नजदीकी कॉलेज में संस्कृत पढ़ने का अवसर मिलेगा। बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून टर्फ और लो प्रेशर एरिया के असर से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी कई जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि कई जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बात करेंगे खेल की। भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। अपर लेक स्थित बोट क्लब के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित यह प्रतियोगिता 16 अगस्त तक चलेगी। प्रतियोगिता में 12 राज्यों और अलग अलग क्लबों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी सेलिंग में अपने रफ्तार, संतुलन और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आगरमालवा जिले के ग्रामीण अंचलों में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी और शिवपुरी जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है। जिले के विभिन्न इलाकों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
2: दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के

0: विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार है, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांति पूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। मैं विश्रामान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृह मंत्री अमित

0: शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने

0: कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम उड़न खटोला, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहेब।

0: लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था उड़न खटोला।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनिए। गायिका है आशा भोंसले और फिल्म का नाम है जागते रहूं।

0: आ रही हैं विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: और लीजिए अब सुनिए फिल्म वचन का गीत आवाज आशा भोंसले की। इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है यास्मीन, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार जानिसार अख्तर और संगीतकार सी रामचंद्र।

0: और आइए अब सुनते हैं फिल्म बारिश का दो गाना, आवाजें आशा भोसले और चितलकर की, शब्द राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन चितलकर यानी सी रामचंद्र की है।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, बोलो ना। अरे जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते। मोहब्बत जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। अरे अरे डॉज गाड़ी की इंजन की कसम,

0: प्यार करेगा।
1: अरे अरे अरे अरे अरे दीवाने अबे मरेगा,
0: नहीं डरेगा नहीं डरेगा, हमको जानी प्यार करेगा प्यार करेगा।

0: प्यार नहीं तो दुनिया में फिर बोलो क्या है रखा।
1: अभी है जवाब दुनिया का कुछ नहीं है बड़ा रखा।
0: प्यार नहीं तो दुनिया में फिर बोलो क्या है रखा।
2: रोक सको तो रोको हमको, रोक सको तो रोको हमको, हम तो नैनाचार करेगा
1: नहीं डरेगा,
2: नहीं डरेगा हम तो जाने। प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने, हम तो जाने। प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा।

0: मानो या न मानो हम तो तुम्हें गले का हार करेगा,
1: नहीं डरेगा
0: हम तो जाने प्यार करेगा, प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने प्यार करेगा, प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने। हाय हाय हाय हाय रे।
2: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
2: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और लीजिए अब सुनिए A.R. कुरैशी का संगीत, शिवान रिजवी का गीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम आलम आरा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
4: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म न्यू दिल्ली का गीत, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
5: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

0: सही, ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए।
1: आवाज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहाँ
2: बस ऐसे ही जैसे भी
1: अब ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम चौंक गई।
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसलिए बोल तो रही है ऐसा वैसा जैसा कह के।
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहां से सृजन की यात्रा शुरू होती है तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है जिज्ञासा हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा करेंगे।
2: बिल्कुल। और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ रही है। तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी हाँ। दो सखियां मिलकर ऐसी मस्ती करती है।
1: बिल्कुल। और ये कहा जाता है ना जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी जितनी गहरी होगी सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज का हमारा विषय भी यही है सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
1: बिल्कुल।
2: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना तो इसके बारे में बात किया जाएगा। और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें। और मेला देखने कब गए क्या खरीदा क्या देखा वहाँ की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखे चार चार लाइनों में पांच पांच लाइनों में तो मजा आएगा।
1: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं घोड़े बेचकर सोना घोड़ा है। जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना और वो ढेर सारे खरीद के ले आते थे और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी।
2: बिल्कुल।
1: और वो दिवाली पर खासतौर से
2: दिवाली
1: प्रसाद के रूप
2: खिलौने मिट्टी के
1: हाँ चढ़ाए जाते
2: थे खिलौने आते थे
1: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे कि वो चक्री होती थी और जात छोटे छोटे चिमटे बेलन
2: रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और मिट्टी के भी बिकते थे
1: और बाद में चीनी मिट्टी के
2: और बड़े सुंदर रंग भी होते थे गुलाबी सफेद पे गुलाबी हरा ऐसे लाइन करके।
1: बड़ा आप कौन सा रंग खरीदती थी
2: जो वहाँ पे मिल जाते थे गुलाबी हरा इसलिए क्योंकि वही खरीदी
1: जाहिर सी बात है जो रंग
2: बोला है वही
1: पसंदीदा रंग होता है।

0: उसी को हम जाके चुनते थे और कई बार रंग उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे और ऐसा भी होता था कि मेले में जा रहे तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे, हर चीज मिल जाती थी। अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है,
1: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं, ताजी हो जाएंगी सबके आज जब बातें करेंगे, है ना।
0: और मेले में और भी तो कुछ होता था, वो हिंडोला झूला होता था,
1: तरह तरह के झूले होते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था।
0: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का, माता पिता
1: जाने का, फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढुंढाई मचती थी कि कौन का, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेला जाना तो
0: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई, अभी हम कहीं खो ना जाए, गुम ना जाए भीड़ में। तो मेले का एक अलग अनुभव होता है, सबके भीतर एक मेला होता है, उन मेले का अनुभव होता है। उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है, मुहावरे बहुत सारे हैं, दिन भर चले अढ़ाई कोस या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
1: जो नावे आंगन टेढ़ा, हाँ, बहुत सारे हैं। तो
0: और बड़े बुजुर्ग हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में लोकोक्तियों में बात किया करती थी, लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए। तो किन्हें कितने मुहावरे याद हैं लिख भेजे हमें, और अब हम क्या करें बताइए।
1: हम तो गीत सुनते हैं,
0: चलिए।

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती के फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं, और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूँ। क्या बात है, अभी यहाँ सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाएगा।
1: क्या बात है, आप इतनी दूर से सुन रही हैं तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार
0: और शुक्रिया सुन रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती है।
1: सही बात है,
0: और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं तो, और जिज्ञासा का घर होता है। और
1: जिज्ञासा में उन्होंने देखिए, हम लोग सोच ही सकते थे कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी वो शांत हो गई।
0: बिल्कुल सही बात है, और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है गूगल मास्टर। जैसे मन में कोई कौतूहल होता है तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था, टीचर्स की शरण में जाना पड़ता था,
1: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही,
0: और किताबें पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती थी।
1: बिल्कुल, और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों, जैसे सवाल मन में उठते हैं तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
0: और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खास तौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए,
1: अंतराल लिया जाए, लेते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो फिर आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं, और सूरज इतना गर्म क्यों होता है। तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा

0: जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा, ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल, और ममता जी इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ ना कुछ नया जानने की, खोजने की और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है।
1: अभी गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा के उसमें चली जाती है, तो वो ये सुन करके बहुत उत्साहित होती है कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है,
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीद कर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुराने संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहाँ से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयाँ, दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहाँ बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं
0: और मेले में जगहों के बारे में भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन, आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई है। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गाँव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव है, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
0: और एक चीज की हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था। हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी, जो अभी भी मेरे पास है। और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी-शर्ट देखा था, जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने

0: ही लेने दिया।
1: और देखिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी है। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला जिसे
0: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले काला खट्टा काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे। तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
1: बिल्कुल, कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके वो चांद तारा है, और क्या कहते हैं मोटरसाइकिल रखी उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोग ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है उसके ऊपर बैठ के फोटो खींचा रहे, जैसे लग रहा हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में तो मेले की यादें ताजा हो जाती है। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो हम लोग खरीदते थे क्योंकि उससे ओठ और जवान लाल हो जाती थी, तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा चढ़ रहा उतर रहा है, पर्ची निकाल रहा है,
0: कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था, वो बहुत आनंद आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा लगी होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोहपाश में बांधा है, देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देख कर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के ये रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है, और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए।
1: जी, और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे, और बहन के लिए मिट्टी के घंटी और चूल्हा हांडी तवा बेलन चकला वगैरह लाते थे, बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे, जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गांव में बंद हो गए हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था, मेला देखेंगे ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता कि ये बहुत ज़्यादा खिलौने की जिद कर रही है, और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है, वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं, और चीज़ें तो अभी मिलती हैं, अभी भी मेले लगते हैं, अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहाँ पर पूरे देश की लोग आते हैं और चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, बहुत सारी लोक संस्कृति की चीज़ें होती हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन, और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं,
1: अचार है, चूरन है, चिप्स पापड़ कचरी ये सब भी बहुत मिलता है, और जो बहुत सारी चीजें बर्तने कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं, और तरह तरह की जैसे आपने चूड़ियां,
0: लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है, ज्यादातर उम्र दराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
1: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी, झूले वगैरह होते,
0: क्योंकि अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में सब कुछ है, तो सब बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं दशहरे का मेला

0: दिखाते हैं, दुर्गा पूजा दिखाते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कितनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे। और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता है।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूँ, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था, हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के चार दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपये देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपये या 20 रुपये वाला सामान खरीदने में ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते हैं कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है। मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी, अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं।
0: तो अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में क्या बात है।

0: हूँ। तो ममता जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी रिचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक है। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है, कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं। तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी के संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की कंपनी है, तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे।
0: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चैन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यही से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
1: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जीवामे की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
0: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इसको इस खरीदारी को मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया, और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जीवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया, और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
1: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जीवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है, और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, रूढ़िवादी परिवार क्यों ना हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
0: जी,
1: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

0: कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है, और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है, और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना,
1: बिल्कुल घोड़े बेच कर सो जाए।
0: और आज हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है, मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ कोर्स में ही पढ़ के समझते हैं। हम लोग तो अपने घर में दादी नानी जो थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रहे हैं नाचना आंगन टेढ़ा।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। दो तीन दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबरा कर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवाकर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं।
0: वैसे ये घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा खुश नसीब कोई है नहीं।
1: बिल्कुल, जिसको गहरी नींद आती हो,
0: गहरी नींद और देर तक आती हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है।
1: और जहाँ बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आए कि पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथी लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहती हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी, हमारे और साथी लिखते हैं कि

0: घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया, घोड़े बेचकर सोना। अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहती है कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उस घोड़े के उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी, मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती है कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
1: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था।

0: था, वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है, इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए, और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं।
1: कई बार ऐसी चीजें हो भी जाती
0: है, ऐसी नींद भी होती है
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर चलेगा, घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया, जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था, आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी, बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया, तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को पर कभी, मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो ये फिर से सो जाए।
0: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए, लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है, और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप जगाते रहो उठना ही नहीं।
1: उनकी भी देखिए, वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह, मतलब पता चला वो 3 बजे सोए।
0: अब उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है। देखते हैं इस गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंद

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात ये है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी
1: है।
2: जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहाँ उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
1: गाना,
2: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे।
2: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे और सुबह 4 बजे उठ

0: के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6 साढ़े 6 7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था. बहुत मजा आया. वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा. फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके. और फिर मुझे बस यूं ही के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने ये लिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना. उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी, और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म.
1: ऑडिशन से मिली थी?
0: ऑडिशन से. बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी.
1: हाँ,
0: और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे.
0: मुझे लगा था कि यार, मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे. मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन. बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का. एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे. ही वांटेड अ सिंगर. तो मैंने वही पे स्कोर किया.
1: क्या बात है.
0: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था. एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म.
1: यू हैव टू सिंग.
0: ओके. আমি লাশময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু আখি

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
0: हाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया।
0: हाँ।
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स के फिल्म
1: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
0: यस। सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड, हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स। तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
1: चार पांच धड़कन मिस।
0: हाँ, बिल्कुल। टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल,
0: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे। वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या एक्सपीरियंस था वो।
0: हाँ, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किसे, कियानो रीव्स।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ये
1: तो मजा है,
0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्ज़ कार्लटन में ठहराया गया था। तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
1: ग्रैंड,
0: या बट thankfully later in life this became a norm in life, like many more films happened like this, jahan matlab bahut travel maine kiya, jury mein bhi rahi, aur ye धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये
0: दिस इज द बिगिनिंग।
1: यस, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा।
0: जी।
1: तो इसके

0: बाद कौन सी फिल्म आई?
1: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
0: मेनन के साथ,
1: राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड। फिर कुछ दिन, कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा नहीं।
0: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
1: बिबौर, हाँ बांग्ला बिबौर भी की। फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
0: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
1: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था
0: हाँ,
1: प्यार हो गया ये भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में, जॉसलिन पुक जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
0: क्या फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
1: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक प्रोफेशनली चलती है वो, लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटेटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनल निज़म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जो मैंने और शारिब हाशमी, हम दोनों ने मिलकर लिखा, पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे, ये हॉबी हो जाती है। जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस,
0: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
1: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं।
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
0: ऑफ कोर्स,
1: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
0: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
1: हाँ,
0: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम किया।
1: और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
0: क्या बात है,
1: इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिकलेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ
0: एवरीथिंग। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
1: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उस

0: मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा. सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर, तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए.
1: तो आप वहां से वापस आ गई.
0: वापस आ गई.
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं. So the weather was getting onto my nerves, whether I like it or not.
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया.
0: जी.
1: भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई.
1: अच्छा.
0: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था. या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, he's British.
1: ओके.
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे.
1: okay.
0: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन.
1: अच्छा, हाँ,
0: वो इंटरनेशनल फिल्म.
1: करेक्ट, करेक्ट.
0: या, या,
1: जी जी जी
0: या.
1: बिल्कुल. उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी.
1: अच्छा.
0: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द.
0: हाँ,
1: बुनी गई.
0: हाँ.
1: फिल्म.
0: फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ. मतलब काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी.
1: बिल्कुल मजेदार है ये. मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं फिर आगे की बात करते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो है. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा.
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है. आवाज दे कहाँ है.
0: बिल्कुल.
1: वो भी सुना जा सकता
0: है. वो भी. हाँ हाँ, वो भी सुना जा सकता है.

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एनवाई सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी, यस,
1: वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन,
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे की बात है।
1: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिचि मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप कास्ट वाला मामला,
1: बट ऐसा नहीं होता है, यू नो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने,
0: पार्च्ड मैं बस उसी की तरफ आ रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है पार्च्ड, जो महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना चाहिए।
1: यस, और पार्च्ड वाज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन।
0: अरे वाह,
1: यस,
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था।
1: हाँ
0: वाह,
1: मैंने ये लिखा था और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम, और हम सोच रहे थे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं, मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड, देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का, एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले, और ऐसे करके बनी वो
0: एक शानदार फिल्म बनी।
1: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी। और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें,
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, यू नो, शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग, एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, यू नो, वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म। रसल कार्पेंटर जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों, ही शॉट द फिल्म, और ये असीम बजाज की वजह से है,
0: हु
1: इज आवर प्रोड्यूसर, और लीना के पार्टनर भी हैं वो। सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर, वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
0: वाह,
1: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया,
0: बड़ा हो गया, और फिल्म बात भी बड़ी करती
1: बड़ी,
0: है,
1: हाँ,
0: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची।
1: यस, एंड लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई,
0: वाह,
1: यू नो, सो इट वाज रियली फैंटास्टिक, एंड आल्सो वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया।
0: बिल्कुल सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है।
1: हाँ, तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है।
0: वाह,
1: ही इज अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट,
0: बिल्कुल,
1: जो
0: अपनी तरह की फिल्में करनी है,
1: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है, और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी, आई वॉज शूटिंग फॉर फिल्म कॉल येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है। तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वांट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वांट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ।
0: वाह,
1: दैट्स ऑल,
0: क्या बात है। और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह।
1: बिल्कुल कमाल, और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। जीशान मेरा जूनियर

0: है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है,
1: बिल्कुल,
0: यू नो इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल. तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है. मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं.
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल, पीछे
0: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई, फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है.
1: अच्छा.
0: पे थी वो और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था.
1: अच्छा,
0: आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूं. तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, अरे व्हाई कांट इट बी अ शी. Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character.
1: Right.
0: So he said, okay. और मैं Dallas जा रही थी next day किसी और फिल्म के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like, okay.
1: Wow.
0: Wonderful.
1: क्या बात है.
0: देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई,
1: वो भी उनके साथ है,
0: उनके साथ
1: जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया.
0: बिल्कुल.
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर,
0: देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर
1: जी. हाँ,
0: वो की मैंने और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज, कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा है.
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो, इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है. तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
0: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्म.
0: हाँ, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की 5th. यस,
1: लीजिए एक फिल्म तो छूटी गई थी.
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर आल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया.
0: जी जी जी जी. एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. ऑल द एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर एवरीबॉडी आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू जॉइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी, जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड. एनीवे सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था एक साल पहले और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो एवरीथिंग वॉज. सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. So it's a personal film for all of us, Angry Indian Goddesses.
1: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का. यहां भी एक गाना सुनते हैं.
0: बिल्कुल.

0: कौन सा गाना होगा?
1: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे, मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन।
0: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है,
1: हाँ।
0: अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं।
1: स्वानंद माफ कर दे। पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था।
0: तब से गाते, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल।

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर।

0: एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये. और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं. एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ़ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल. तो उसके बाद काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. और फिर फिल्म ख़त्म हुई, शूटिंग ख़त्म हुई, तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म. इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल. फिर जब वो हुआ और हमने एडिट ख़त्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माई गायनोकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा. और वहाँ उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है.
1: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार.
0: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
1: और उसने कोई संकेत नहीं दिए.
0: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज. सो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है.
1: बिल्कुल,
0: यू नो, एंड इट वाज अनरियल. और इट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माय फादर टू
1: द सेम थिंग.
0: या इट वाज, ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, CML. सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माय मदर.
1: ओ गॉड.
0: तो मैं रिपोर्ट्स जो है, हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय. ये हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी. तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड 9-year-old, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी डॉटर, एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक, एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर. But obviously I had to tell her at some point. मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, वैसे दोस्त है, बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन. तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल. मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन. क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है. मेरे मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूँ, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर. इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, देर इज नोबडी एल्स. So how would I do this? And the expenses of my treatment is obnoxiously high.
1: Oh ho ho ho.
0: Initially insurance also refused my claim.
1: क्यों?
0: वो उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूँ, and I had to fight and fight and fight with the insurance.
1: आप जीती?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: But the thing is there were too many battles. You know, इसमें मैं heal कैसे हूँ? Because it's also about healing and I was coming and the stress of the film.
1: वो तो रखा ही हुआ था.
0: तो it was just, I had reached the rock bottom the day the insurance claim got rejected. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. That day I really hit the rock bottom कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा.
1: बिल्कुल.
0: But my sister told me कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा. You have to tell your friends, नहीं तो if not now then when. वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? That's when I reached out. मेरा एक girl gang है. मैंने सबसे पहले उनको बताया.
1: वो लोग कौन है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है.
1: इसलिए तो मैंने नाम पूछे हैं.
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकोना है, विद्या है.

0: शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतोंडकर है, दिस वाज आवर गर्ल गैंग, ऋचा चड्ढा है। तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली। शबाना जी आके मेरे मम्मी से मिलके, यू नो जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसको तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है।
1: गजब।
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ। एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है। मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन, मुझे
1: हर जबकि 1.5 साल बीत चुका है।
0: हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए, बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग। और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके।
1: ये कितना मुश्किल था।
0: ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था, और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट 1 पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम का अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट, और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माय फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक।
1: ये प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए,
0: ये
1: शारे इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल गुजर रही जिस थी। दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी, और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट होगा।
0: मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपने पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर,
1: वेरी डिफिकल्ट टाइम,
0: वेरी डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप, और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को कहा अभी लिखते हैं हम इसी के बारे में लिखते हैं,
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, तो That evening was incredible, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और that was the last evening, एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा, अपने ही सेल्स है which have gone rogue, it's up to me if I can heal. ये मतलब it just went back and forth like that, and that's the day मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है। और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब तो।
1: पहला शो कब कहां हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ।
1: जी जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है, पर स्क्रीनिंग करवाना अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट्स करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की,

0: ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो। हाँ, उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है, तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट। और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
0: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ, अपना प्ले कर रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यही कर सकते हो,
1: और
0: हियर एंड नाउ, कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे। ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था, बट अब तो मतलब ये इंटरनल है, वी रियली डोंट नो। मतलब मैं एक दिन पूरा, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस। हाउ बिजार इज दैट। मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन, मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट, मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का, मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट। सो हाउ देन, यू जस्ट नेवर नो। तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवार ता हवे, आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ। मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी, मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहां, हमारे अड्डे चलते थे वहां, कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले मतलब ये, ताकि वो वक्त निकल जाए, मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है। बाल झड़ रहे थे, मैंने शेव करवा लिए,
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया properly,
0: yes,
1: कि yes I am going through this,
0: yes I lost a lot of weight, I mean that's a part of my life, I am an artist and I experienced it, I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences, और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तनिषा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: नहीं मत, कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में।
1: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ, लेकिन वो कब आएगी, कब होगा ये पता नहीं अभी, बट आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स, फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ।
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है, अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो, सो शी हैज डायरेक्टेड इट।
1: ओके, वाओ, बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही है, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं, बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है, देन आई स्पेंड टाइम विद हर। खाना बनाने में मुझे मजा आता है, और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ।
1: क्या बनाती हूँ?
0: हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा आजकल जो हो रहा है मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो, उसको बुला, मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है मेरी वजह से। अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन, उसको सब एफर्टलेसली

0: आता है, इतना सुन चुकी है वो किस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी.
1: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ.
0: या
1: बिल्कुल,
0: वो एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है. अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये मिलेगा.
1: पहले ही बोल देती है. क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे.
0: बिल्कुल, और जाते जाते एक गाना
1: जरूर,
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें जीने के लिए, सफर फिल्म का ये गाना. इस गाने को इंदीवर ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हैं.

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ
0: जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का भी फैसला लिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भोपाल में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के मुद्दों पर चर्चा करनी है तो संसद चलने देनी चाहिए। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। अपर लेक स्थित बोट क्लब के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित यह प्रतियोगिता 16 अगस्त तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

आज की ये खूबसूरत शाम, आसमान में छाए बादल, हवा में घुली हुई मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और बीच बीच में बरसती बारिश की बूंदें। सच कहूं तो आज मौसम ने न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से सबका मन मोह लिया है, बल्कि वातावरण को भी संगीतमय बना दिया है। जरा गौर कीजिएगा, छत पर गिरती बारिश की बूंदें हो, पेड़ों से टपकता पानी हो, या सड़कों पर पड़ती बूंदों की आवाज, हर आवाज की अपनी एक लय, अपना एक सुर होता है। और शायद संगीत की खूबसूरती भी यही है कि वह केवल साजों में नहीं, हमारे आसपास की हर आवाज में छिपी होती है। और जब बात सुर, ताल और एक अनोखी धुन की हो, तो आज का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि आज दुनिया मना रही है विश्व स्टील पैन दिवस। नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियोज की घड़ी पर समय हो रहा है 5:03। आवाज है आपके रेडियो साथी तुषार तमिल सेना की। स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवाओं की वाणी, युववाणी। गुड इवनिंग।

उदित नारायण की आवाज में सुनाइए गीत फिल्म वीर जारा से। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था मदन मोहन का। दोस्तों, संगीत की दुनिया में आपने तबला, ढोलक, गिटार और पियानो जैसे कई वाद्य यंत्र सुने होंगे, लेकिन एक वाद्य ऐसा भी है जो देखने में जितना अनोखा है उसकी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत और दिलचस्प है। उसका नाम है स्टील पैन। यह एक विशेष प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है जिसका विकास कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ। पहली नजर में यह आपको किसी बड़े धातु के कटोरे जैसा दिखाई दे सकता है। इसे स्टील से बनाया जाता है और इसकी सतह पर अलग अलग हिस्सों को इस तरह तैयार और ट्यून किया जाता है कि उन्हें छोटी स्टिक से बजाने पर अलग अलग सुर निकलते हैं। इसकी चमकदार और मधुर ध्वनि कैरेबियाई संगीत की एक खास पहचान बन चुकी है। इसके इतिहास की कहानी भी बड़ी रोचक है। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों ने अलग अलग धातुओं की वस्तुओं से संगीत तैयार करने के प्रयोग शुरू किए। धीरे धीरे पुराने ड्रम और स्टील के कंटेनरों को आकार देकर एक वाद्य यंत्र तैयार किया गया जिसे आज हम स्टील पैन के नाम से जानते हैं। यानी सोचिए दोस्तों, जिस धातु को सामान्य परिस्थिति में हम शायद बेकार समझकर छोड़ देते, इंसानी रचनात्मकता ने उसी में संगीत पैदा कर दिया और यही स्टील पैन की कहानी को खास बनाता है। यह केवल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि क्रिएटिविटी, कम्युनिटी और कल्चरल आइडेंटिटी की कहानी भी है। स्टील पैन का त्रिनिदाद और टोबैगो की संस्कृति से बहुत गहरा रिश्ता है। वहां के प्रसिद्ध कार्निवल समारोह में स्टील पैन संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। कई कलाकार मिलकर जब स्टील पैन बजाते हैं तो ऐसे समूह को आमतौर पर हम स्टील बैंड या स्टील ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। अलग अलग आकार और अलग अलग स्वर वाले स्टील पैन जब एक साथ बजते हैं तो पूरा वातावरण संगीत से भर उठता है। श्रोताओं, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अगस्त यानी आज ही के दिन को विश्व स्टील पैन दिवस घोषित किया। इसके पीछे उद्देश्य था स्टील पैन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दुनिया के सामने लाना तथा संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा, सामाजिक जुड़ाव और सतत विकास जैसे विचारों को प्रोत्साहित करना है। तो आज विश्व स्टील पैन दिवस पर संदेश यही है कि अपनी संस्कृति और संगीत को सहेजिए, नई चीजों के साथ प्रयोग करते रहिए और अपने आसपास मौजूद छोटी छोटी चीजों में भी क्रिएटिविटी तलाशिए। तो ये थी कुछ बातें विश्व स्टील पैन दिवस के ऊपर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज में सुनाए गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। गीतकार थे जयदीप साहनी, संगीत था सलीम सुलेमान का। साथियों अब समय है हमारे युवा साथियों के लिए एक रोजगार सूचना का, तो तैयार हो जाइए, अपने साथ कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी IBPS द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्लर्क CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के कुल 11,403 पोस्ट के लिए 1 अगस्त से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदक की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 21 अगस्त। तो श्रोताओं ध्यान से सुनिएगा कि अंतिम तिथि है 21 अगस्त, आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैं पुनः दोहराता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन आप कर सकते हैं। IBPS है क्लर्क CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के कुल 11,403 पोस्ट हैं। तो ये थी कुछ बातें रोजगार सूचना से संबंधित। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

कमाल खान की आवाज में सुनाइए गीत फिल्म डर्टी पिक्चर से। गीतकार थे रजत अरोड़ा, संगीत था विशाल शेखर का। दोस्तों, आज जब बाहर बारिश की वजह से हवा में ताजगी है और हमारे आसपास हरियाली कुछ और निखर गई है, तो एक सवाल जरूर मन में आता है कि क्या हमारा भविष्य भी इतना ही साफ, हरा भरा और खूबसूरत हो सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें ऊर्जा के इस्तेमाल का अपना तरीका बदलना होगा। और यहीं से बात शुरू होती है स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य की। हमारे घर की बिजली हो, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां हो या बड़े बड़े उद्योग, इन सभी को ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लंबे समय से दुनिया अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर काफी हद तक निर्भर रही है। समस्या यह है कि इन्हें जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड सहित ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो हमारे जलवायु के लिए हानिकारक होती है। इसके मुकाबले सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी और जल विद्युत जैसे कम कार्बन तथा रिन्यूएबल एनर्जी हमें अपेक्षाकृत स्वच्छ विकल्प प्रदान करते हैं। जब सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाते हैं, तो बिजली उत्पादन के दौरान कोयला जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह हवा की शक्ति से घूमने वाली विंड टर्बाइन बिजली पैदा करती है, यानी प्रकृति में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ देर पहले हमने स्टील पैन की बात की, जहां इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी से धातु को संगीत में बदल दिया। और स्वच्छ ऊर्जा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां इंसान अपनी तकनीक और क्रिएटिविटी से धूप और हवा को उपयोगी ऊर्जा में बदल रहा है।

हरित भविष्य का मतलब केवल सोलार पैनल या विंड टरबाइन लगा देना नहीं है। हरित भविष्य का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें हमारी जरूरतें भी पूरी हों और प्रकृति पर दबाव भी कम पड़े। इसमें युवाओं की भूमिका शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरित भविष्य केवल सरकारों और वैज्ञानिकों का प्रोजेक्ट नहीं है, यह हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी भी है। आने वाले वर्षों में नए इंजीनियर, उद्यमी, शोधकर्ता और इनोवेटर ऐसी तकनीकों पर काम करेंगे जो ऊर्जा को और स्वच्छ, सुलभ और प्रभावी बना सके। अगली बार जब आप किसी छत पर सोलार पैनल या दूर कहीं घूमती हुई पवन चक्कियां देखें तो उन्हें केवल मशीन मत समझिएगा। वे उस बदलाव की तस्वीर है जिसमें विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि साथी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ बातें स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य को लेकर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाज में सुनाए गीत फिल्म नमस्ते लंदन से। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था हिमेश रेशमिया का। साथियों, घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम काफी अच्छा लगा होगा। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए आपके रेडियो दोस्त तुषार तिमिल सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: तान्या की आवाज में अभी आप सुन रहे थे रवि पवार का लिखा ये गैर फिल्मी गीत। संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शान की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गैर फिल्मी गीत।
1: Ladies and gentlemen, soul survivor, man of the hour, we bring to you something old with a little bit of new. Going rubber dubber dub, live.

संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं कृष्णा और साथियों की आवाज़ों में कृष्णा का लिखा ये गैर फिल्मी गीत।

0: आजा पढ़ ले, हाय आजा पढ़ ले दिल की पत्री।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं पंडित अजय पोहनकर से उन्हीं का लिखा ये गैर फिल्मी गीत।

पंडित अजय पवानकर से अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अली हैदर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत उन्हीं की आवाज़ में।

0: आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित

0: आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं कृष्णा फिल्म से। आनंद राज आनंद के बोल अनु मलिक का संगीत।

कृष्णा फिल्म से आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में ये गाना। कार्यक्रम का अगला गाना गैम्बलर फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

चले

आनंद बख्शी के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं। पेश हैं सदाबहार गीत।

कालिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था, संगीत आर डी परमन का। आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ों में गुलशन बावरा का लिखा ये गीत। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

रफू चक्कर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ों में। सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा ये गाना। संगीत है आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम है सीता और गीता।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत आरटी परमन का था, फिल्म का नाम था सीता और गीता। इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: अभी आप सुन रहे थे मोतीलाल कुशवाहा से ये हनुमान भजन।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लोक रंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं काशीराम अहिरवार से ये वर्षा गीत।

है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7 बजने को हैं। हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान की पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले

0: मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी देते हैं आज के बाकी कार्यक्रमों की, साथ ही कल के मुख्य कार्यक्रमों की। शुरुआत करते हैं आज के बाकी कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही देर में यानी 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। लोक संगीत कार्यक्रम 7:20 पर होगा। 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 दिल्ली केंद्र से होगी संसद समीक्षा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम 8:15 पर। गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता 8:30 से। समाचार संध्या का आज अंक दिल्ली केंद्र से होगा 8:45 से। रात्रि 9 होंगे आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत 9:30 से होंगे। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। हिंदी में समाचार रात्रि 11 और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर और 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ 6:30 से। भूले बिसरे गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 6:40 से। सुबह 7 होगा रोजाना का क्रम सुबह सुबह। कृषि संकेत कार्यक्रम सुना जा सकता है 7:05 से। 7:20 पर होंगे मन चाहे गीत संगीत सरिता 7:45 से। लोक संगीत कार्यक्रम होगा 8:15 पर। चित्रपट संगीत 8:45 से। जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से सुबह 10:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण 10:10 से। 11 होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। भोपाल केंद्र से युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:02 पर और 5:30 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। सदाबहार गीत 6:30 पर। लोकरंग 6:45 पर। 7:20 पर होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। चित्रपट संगीत 8:15 में।

0: मिनट पर और संगीत सरिता 8:30 पर। 9 बजे होंगे मन चाहे गीत। तो ये थी जानकारी आज और कल के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से होंगे थोड़ी ही देर में।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट का फैसला, भोपाल विदिशा मार्ग होगा 4 लेन। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर। और भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, 527 लोगों का रेस्क्यू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा का संदेश दिया।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: इससे पहले संसद में मंगल मिलन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और एनडीए के सांसदों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम का जय घोष किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने को अपराध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 कानून बन गया है। लोकसभा ने 30 जुलाई को जबकि राज्यसभा ने इससे एक दिन पहले विधेयक को मंजूरी दी थी। नए कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। कानून के तहत राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई। बैठक में भोपाल विदिशा मार्ग को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन की मंजूरी दी गई। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत करीब 1,757 करोड़ रुपए होगी और सड़क के साथ शोल्डर भी बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इछावर के और खेड़ी में सोयाबीन अनुसंधान के लिए जमीन निशुल्क आवंटित करने का फैसला भी किया। बैठक में जनविश्वास अभियान की भी समीक्षा की गई और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया,
2: जनविश्वास अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में हमारा जो जनविश्वास अभियान है, इसके शुक्रवार के दिन की जो रिपोर्टें हैं पूरे प्रदेश में, चाहे शासकीय स्तर अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बहुत ही बढ़िया इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी समयों में जो स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं उनके निराकरण के लिए और सरकार से सीधे संवाद के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कोशिश है सरकार की।
0: प्रदेश मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक कुल 44,000

515 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, सिकल

0: AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय से 450 रुपए में गैस रिफिल योजना के तहत 22 लाख पात्र लाडली बहनों के खातों में 99 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। ये राशि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गैर पीएमयूआई श्रेणी की पात्र महिलाओं को दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समग्र पेंशन योजना के तहत 35 लाख हितग्राहियों के खातों में 211 करोड़ 53 लाख रुपए की पेंशन राशि भी अंतरित की। इसके अलावा डॉक्टर यादव ने राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महोत्सव में आधुनिक कृषि उपकरणों और उन्नत खेती के तरीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी करेंगे। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें होंगी। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। बात मौसम की। प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होमगार्ड मुख्यालय स्थित सिचुएशन रूम पहुंचकर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से सीधे बातचीत की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि अब तक प्रदेश में 527 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। खंडवा में बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 7 कांवड़ियों को भी सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश में मॉनसून टर्फ और लो प्रेशर एरिया के असर से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी कई जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज के दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी जमीन में पैदा होने वाले बेहद कम आवृत्ति के कंपन को कई किलोमीटर दूर तक महसूस कर सकते हैं। उन्हें जंगल का इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ 18 अगस्त को होगा। आगरमालवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। मंदसौर में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के आगामी शिविरों की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले के थांदला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 935 लीटर से ज्यादा घी जब्त किया है। बुरहानपुर जिले में इस मानसून अब तक औसत बारिश का करीब 71% पानी बरस चुका है। खंडवा जिले के सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डिमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डिमर ने भोपाल में आयोजित अश्मिता नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में कुल 6 पदक जीते हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए प्रोविजनल रूप से चयनित यात्रियों को अग्रिम हज राशि जमा करने के लिए अब अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट का फैसला, भोपाल विदिशा मार्ग होगा 4 लेन। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर। और भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, 527 लोगों का रेस्क्यू। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

कुमार अनुरागी से ये वर्षा गीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं राधा खरे से ये सावन गीत।

राधा खरे और साथियों के गाए इसी वर्षा गीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में सभी किसान भैया बहनों को रीता बहन की राम राम। भैया बिन्ना हरो, औषधीय पौधा जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, सर्वगंधा और स्टीविया जैसे कई पौधा होते हैं, जे पौधा दवाई बनाने में उपयोग करे जाते हैं। अच्छी बात है कि औषधियों की खेती कम लागत और कम पानी वाले क्षेत्र में भी बम्पर उत्पादन और मुनाफा देते हैं। आज के समय में फार्मास्यूटिकल्स उद्योगन में ई की लगातार मांग बढ़ रही है। सरकार के द्वारा ई पर किसानन को विशेष सब्सिडी दी जाते हैं। औषधि पौधन की खेती करवे को सबसे बड़ो फायदा होते के जे कम उपजाऊ और बंजर जमीन पे भी आसानी से उग सकत है। संग में कम खाद और कम कीटनाशकन की आवश्यकता होते ये उगाए के लाने। आज के समय में जड़ी बूटियों की भारी मांग है। एक लाने सरकार भी किसानन को कई योजनाएं बना के देते है जिससे कि किसान फसलों की खेती कर सके और आसानी से बाजार में बेच के लाभ कमा सके। उन्नत है विषय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हितग्राही राहुल परमार से बातचीत। स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित ई कार्यक्रम में बात करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी के माध्यम से लगातार आपके लिए ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, आप जिन्हें आइकॉन बना सकते हैं अपना, क्योंकि ये वे किसान हैं जो बहुत छोटे स्तर से चलकर आज एक ऐसी ऊंचाई पर आए हैं कि लोग उन्हें उनके उस काम से, उस नाम से जानने लगे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ राहुल परमार जी से। भोपाल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हीरापुर गांव के किसान हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं और आज पूरे प्रदेश में उनका एक नाम है। उनका काम जो किया गया है उसकी एक पहचान है मालवा फिश हैचरी के नाम से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार जी।
3: मैं सबसे पहले तो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगा।
4: मेरा नाम राहुल परमार है, मैं ग्राम हीरापुर से हूँ, जिला सीहोर से। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाया गया है
3: जी।
4: इस प्रोजेक्ट में मूलतः मछली के बीज का उत्पादन होता है
3: जी।
4: हाँ, और ये अभी लगभग 10 एकड़ के आसपास में है और यहाँ से आसपास के 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहाँ के किसान हमसे प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं और उनके बड़े बड़े जलाशयों में मछली का बीज जाता है।
3: मैंने जब पूरा ये आपका फॉर्म देखा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, कुछ बड़े पॉन्ड्स बने हुए हैं, पक्के भी हैं, कच्चे भी हैं, इन सब में कितने पॉन्ड्स हैं और कितना काम होता है इसमें?
4: देखिए, ये हैचरी एक टेक्निकल चीजें हैं ये बिल्कुल। और जैसे आपने यहाँ देखे होंगे करीबन 17-18 तालाब हैं, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग है, किसी की डेप्थ ज्यादा है, किसी की कम है, तो ये अलग अलग पर्पज से यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मत्स्य प्रजनक की, कि जिन मछलियों के माध्यम से हमें अंडे और बीज प्राप्त होते हैं तो उनको मत्स्य प्रजनक कहा जाता है। तो ऐसे प्रजनक रखने के लिए तालाब की गहराई होती है 6 से 8 फीट, यानी गर्मी में उनको ठंडक बनी रहे, पानी गर्म ना हो। और उन तालाबों का साइज भी बड़ा है क्योंकि जिसमें अच्छे से बड़ी मछलियां घूम पाए, क्योंकि वो साल भर में रखनी होती है और पानी का एक लेवल भी मेंटेन करना होता है।

0: और जो आपने छोटे तालाब देखे हैं उनको कहते हैं नर्सरी पॉन्ड, जिनमें हम जो छोटी मछली के बीज होते हैं जिन्हें जीरा या स्पॉन कहते हैं, तो उनको हम 8 से 9 दिन उन तालाबों में रखते हैं। अच्छा। और वो बड़ी संख्या में रहते हैं, यानी एक ही तालाब में 12-15 लाख मछली के बच्चे रहते हैं। फिर जब उनका थोड़ा सा साइज आधा इंच के आसपास आता है 9 से 10 दिन में, तब हम उसको पलटी करते हैं, तो फिर वो रेयरिंग पॉन्ड में जाते हैं। रेयरिंग पॉन्ड का मतलब कि उनकी गहराई, तालाबों की गहराई 4 फीट के आसपास रहती है, और बच्चा जैसे ही 1 इंच के आसपास होता है तो फिर किसान बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उनमें ले जाना शुरू कर देते हैं।
1: अब इस समय जो आपका जो बीज है मछली का, ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है?
0: देखिए, मैं इसको बताता हूँ थोड़ा शुरू से कि मछली बीज के सीजन शुरू होता है आपके मई के आसपास से।
1: ठीक है।
0: मई से पहले प्रजनकों को अच्छा आहार संतुलन सब कराया जाता है। मई के समय में कुछ मछली, जैसे ही मानसून आने वाला होता है, ब्रीड के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही बारिश आना शुरू हुई और बड़े किसानों के तालाबों में पानी आया, जैसे बड़े बड़े जो जलाशय हैं, तो वो जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट महीने में बीज की शुरुआत हो जाती है, तब किसान लेने आते हैं।
1: इतने लंबे समय तक इनको संरक्षित रख पाना, उनकी खान खुराक, ये सब कैसे मैनेज होता है?
0: देखिए, बच्चा जैसे ही उत्पादन हुआ उसका, तीसरे दिन से उसका भोजन शुरू हो जाता है। अगर आपका आहार प्रबंधन सही नहीं है तो आपको आपके तालाब में 10 लाख बच्चा दिख रहा है, ठीक, आप इसके 4 से 5 दिन बाद देखेंगे तो आपको हो सकता है वो आधा ही मिले, 5 लाख मिले, मर जाता है। उस नर्सरी पॉइंट में मेंढक का बच्चा तो नहीं आ गया, या कोई कीट पतंग जो पानी वाले हैं वो तो नहीं आ गए, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तालाब का प्रबंधन में तालाब को सुखाया जाता है और महुए की खली का छिड़काव होता है ताकि उसके कीट पतंग सब मर जाए, क्योंकि दवाई का प्रयोग करोगे, दवाई का असर रहेगा तो फिर वो बच्चों पे भी नुकसान करेगा। फिर उसमें प्लैंकटन कैसे बने, जो मछली के लिए प्राकृतिक आहार होता है, एक सफेद छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत माइक्रो लेवल पे, उसको मछली का बच्चा खाता है, तो उसको कैसे डेवलप कर ले, तो वो एक फर्मेंटेशन प्रक्रिया है, यानी किसी चीज में हल्का सा सड़न की जो प्रक्रिया शुरू होगी, तो वो जीभ को मछली का बच्चा खाता है, तो वो बनाना पड़ता है, तो 2 से 3 दिन बाद ये प्लैंकटन विकसित हो जाते हैं और मछली के बीज वो खाते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई बड़े बच्चों को हमारा किसान क्या खिलाएं, तो फिर वो उसके लिए कमर्शियल फीड भी आते हैं, तो कुछ घर भी बनाते हैं, कुछ रेडीमेड कंपनी से लाके भी खिलाते हैं।
1: पूरी लेंथ में आने में अपनी मछली को कितना समय लग जाता है?
0: देखिए, वो जलाशय पे निर्भर करता है और खाना खुराक पे निर्भर करता है। किसान जितना समझदार होगा, होशियार होगा खाना खुराक के प्रति, वो उसका संचयन उस तरीके से करेगा तालाब में, यानी अगर अगर ज्यादा मात्रा में, हाई डेंसिटी में मछली बीज का संचयन किया तो मछली की ग्रोथ प्रभावित होगी, बच्चा जिंदा रहेगा लेकिन बच्चे का साइज ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो सरकारी मानक है कि इतने हेक्टेयर पे इतने हजार बच्चे डालना चाहिए, तो सरकार ने ये मानक तय किए हुए हैं, कई साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उन्हें बताएं। अगर किसान उस शासकीय मानकों के अनुरूप मछली बीज डालेगा तो फिर ये निश्चित ही है 4 से 5 महीने के अंदर आधा किलो प्लस साइज उसको देखने को मिलेगा, और उसकी उसी समय से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे वो हार्वेस्टिंग करता रहेगा, रोज 10-20 किलो, 50 किलो या 1 क्विंटल निकाला, तो उसका साल भर रोजगार रहेगा। क्लोज सीजन रहता है उसको छोड़ के, तो बाकी उसकी आजीविका वो अच्छे से चला सकता है, पर इसमें डेंसिटी का विशेष ध्यान रखना है उसे।
1: अच्छा, हर किस्म की मछली के लिए अलग डेंसिटी तय होगी?
0: नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे इंडियन मेजर कार्प है, ये 6 मछलियां हैं, जैसे कतला, कामन, ग्रास, रेहू, नरेन, मृगल, ये 6 फीट पानी में अगर हम लेयर की बात करें तो कतला सबसे ऊपर और कामन कार्प सबसे नीचे, यानी आदर्श स्थिति ये 6 फीट पानी तो होना चाहिए, इससे कम नहीं हो, तब इन मछलियों को 40-30-20 के अनुपात में डाला जाता है। अगर एक ही तरीके की मछली ज्यादा डाल दी तो फिर उसमें दूसरी मछली की ग्रोथ प्रभावित होगी, इसलिए इसका अनुपात आवश्यक है।
1: रंगीन मछली के लिए क्या करना होगा?
0: रंगीन मछली यूनिट हमारे पास हैचरी है, रंगीन मछली यूनिट की भी, और इसका प्रोडक्शन भी होता है, अभी काम हमारा कुछ चालू भी है इस पे, और हमने ट्रायल बेसिस पे बहुत सारी ब्रिड जैसे मूली, गप्पी, गोल्डफिश, चिकलेट, कुई कार्प, ये सब मछलियों का हमने प्रोडक्शन भी किया है, तो हमें

0: समझ में आया कि अपने क्लाइमेट में ये मछली सरवाइव कर जाती है, तो फिर हमने इस यूनिट को लिया और अब हम इसका उत्पादन करके पास के मार्केट में इसकी सप्लाई करेंगे। और हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बाहर से ज्यादा बच्चा ना आए, छोटे छोटे किसान यही उत्पादन करें। तो हम ऐसे किसानों की कुछ चेन भी बना रहे हैं, तो जिससे किसानों को डायरेक्ट लाभ हो। क्योंकि क्या है, व्यक्तिगत तौर पे तो आप यूनिट बना ली, आपको लाभ हो रहा है, पर भाई शासन की मंशा है कि हमारा किसान सशक्त बने। तो हमारा ये उद्देश्य है, इस यूनिट पे कई किसानों विभाग के माध्यम से भी आते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, ये स्टार्टअप मॉडल को समझते हैं और किस तरीके से इस मॉडल से जुड़ के वो उनकी आय बढ़ा सके। कई कॉलेजों यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू भी है, जैसे वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या निरंतर एग्रीकल्चर फील्ड के जो बच्चे होते हैं उनका रावा का जो प्रोग्राम होता है उसमें स्टूडेंट्स आते हैं। तो उन स्टूडेंट को भी जब उनकी पढ़ाई होगी तो उन्हें स्वरोजगार की प्रेरणा मिलेगी, उनको बिजनेस मॉडल आज समझेंगे। और ये मॉडल अगर वो अपने जिले में करते हैं तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे रोजगार पैदा होगा। और पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अगर किसान काम कर रहा है तो बहुत तकनीकी रूप से काम करेगा, तो उसकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।
1: राहुल जी, आखिरी सवाल, टर्नओवर कितना है?
0: देखिए, ये सवाल बहुत लोग करते हैं, आप कितना कमा लेते हैं, जबकि 5 साल हो गए हमें। आप यकीन मानेंगे, हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा हम इसी व्यवसाय में तुरंत लगा देते हैं, क्योंकि हमें व्यवसाय लगातार बढ़ाना है। हमने ये 2.5 एकड़ से शुरू किया था और आज करीबन 11-12 एकड़ में हमारी निजी भूमि में तालाब है, बाकी हम ऐसे 500-700 एकड़ तालाबों से जुड़े हुए हैं। कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, जैसे कई समिति वाले ऐसे होते हैं उनके पास पैसे का अभाव है, तो हमने उनसे किसी तरीके का एक टाई अप कर रखा है कि भाई आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन आप हमें देंगे तो हम इसमें आपको बच्चा मुफ्त दे देंगे, और किसी तरीके का आर्थिक वो चाहिए तो ऐसा सहयोग कर देंगे। मतलब इसको पार्टनरशिप ना कह के एक सहयोग के रूप में। तो इस तरीके से आज हमारे पास रकबा 500 से 700 एकड़ रकबा हो चुका है, जिसमें हम डायरेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं।
1: वाह जी, अगला पड़ाव क्या है अब आपका?
0: अगला पड़ाव यही है कि जो हमारे ऐसे तालाब जिनमें 12 महीने पानी नहीं रहता, इनको किस तरीके से हम मछली के बड़े बीज उपलब्ध करा सकें, ताकि ये 12-मासी जलाशय की तर्ज पर उन जलाशयों में भी मछली का उत्पादन कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ कुछ बड़े जलाशयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पैन कल्चर और इस प्रकार की कुछ पद्धति अपनानी होगी जो इस क्षेत्र में नवाचार का काम करेगी। तो कुछ जगह हुआ भी है, कुछ जगह असफल भी हुआ है, तो हम उसी पे थोड़ा और अध्ययन करके और किस तरीके से इसको जोड़ सकें, और जो मध्य प्रदेश के बड़े बड़े डैम हैं इनसे कैसे कनेक्ट करके हम इस नीली क्रांति में सहभागी बने और मध्य प्रदेश में इस अर्थव्यवस्था को और ऊंचाइयों पे ले जाएं।
1: हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बिन्नाहरो, अब सुना थे एक श्रृंगार गीत, जी एक गाँव है अनरथ लाल बैरसिया ने।

0: जे सुनी आपने लोकगीत जे गाँव हतो अनरत लाल बरसिया ने। भैया बिन्नाहरो अब सुनत है स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम, विषय है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। और ई योजना में जो हितग्राही वे हैं प्रदीप परमार, जो के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला सीहोर से हैं, और इनसे बात करी है मनोज सक्सेना भैया ने, जो एक स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये भोपाल से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है हीरापुर। जी हाँ, हीरापुर आज पहचाना जाता है दूध के क्षेत्र में। नाम हीरापुर है लेकिन यहाँ दूध का उत्पादन हमारे साथ जो सफल कृषक हैं, उन्नत कृषक हैं, वे कर रहे हैं, और उनसे हम जानते हैं कि ये दूध का जो बड़ा कारोबार खड़ा किया गया है इसके पीछे उनका संघर्ष क्या है, किस तरीके से उन्होंने ये काम किया कि आज क्षेत्र में इनकी डेयरी को जाना जा रहा है। हमारे साथ हैं गोरेलाल जी परमार।
2: नमस्कार जी, हाँ मेरा नाम है गोरेलाल जी परमार, ग्राम हीरापुर, तहसील जिला सीहोर। मैं दूध का कारोबार करता हूँ, छोटे से उससे स्तर से मैंने स्टार्ट करा, और सीहोर में भी हमारा एक काउंटर है छोटा सा, और अगल बगल से दूध भी लाते हैं, और सब मतलब जो है सिस्टम पशुओं की देखभाल, नए पशु लाना ले जाना, और दूध का मावे का सब घी वगैरह का भी सब कारोबार शुरू करा है हमने, और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा कारोबार चल रही है हमारा, और अच्छा लग रही है हमें।
1: गुरुलाल जी, जैसे कि हम आपका ये कारोबार पूरा देख रहे हैं, काफी नाम है
2: जी।
1: और बहुत सारी मैं देख रहा हूँ मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारे आपने सब संयंत्र लगा रखे हैं
2: जी।
1: ये जो शुरुआत आपने की थी वो कब की थी आप?
2: मेरे को ये तो जानकारी नहीं है, और मेरे को 40 साल लगभग होगा
1: जी। तो 40 साल पहले जब शुरुआत करी होगी तो आपने किस तरीके से काम शुरू किया?
2: मैंने पैदल दूध लाया ग्राम पीपलनेर से, और हाथ में डिब्बे सिर पे रख के, रोड का भी साधन नहीं था।
1: अच्छा।
2: फिर साइकिल ली धीरे से, साइकिल से दूध लाया, साइकिल से ही मैं सीहोर ले गया, और बंदी हन लगाई, क्वार्टर बंदी हन बाटी सीहोर में, मैंने होटल हन पे दूध दिया, फिर एक छोटा सा काउंटर लिया, और वहाँ दुकान डाल के अब आहिस्ता मतलब सब काम मतलब वहाँ से शुरू करा जी।
1: मतलब आपने 40 साल का संघर्ष इस पूरे प्रोजेक्ट पे हमें दिखाई दे रहा है।
2: हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा है साहब, बहुत बड़ी क्या
1: जी जी, जी।
2: ये हाँ मतलब जो है
1: एक चीज और है
2: जी,
1: कि पहले जब आप कह रहे हैं ना कि सिर पर दूध रख के हम ले जाते थे
2: जी, जी।
1: संसाधन बढ़े, सड़कें अच्छी हो गई, फिर आपके वाहन भी बढ़ाए होंगे आपने।
2: हाँ,
1: तो उस समय कितनी गाय आपके पास होती थी?
2: उसमें लगभग हमारे पास में 20 से 25 थी, फिर धीरे धीरे हमने बढ़ाई, तो आज हमारे पास 100 से 150 जानवर भी हैं, और लोगों को हमने अगल बगल जो अपने सदस्य हैं उनको दिलवाए भी। हाँ, सबको मतलब जो है रोजगार से लगाया हम लोगों ने। हाँ, और बच्चे उनको भी लगाया, बच्चे आज ऊंची स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे हम।
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस समय हम हैं भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर हीरापुर गांव, जहाँ की गोरेलाल दूध डेयरी है वहाँ पर हैं। हमने गोरेलाल जी से भी बात की कि उन्होंने किस तरीके से इस डेयरी की शुरुआत की थी। कहते हैं ना कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में कारोबार जाता है तो वह किस तरह से बढ़ता है, उसका प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। उनके बेटे हैं हमारे साथ प्रदीप परमार जी।
3: जी
1: प्रदीप जी, पिताजी ने कारोबार शुरू किया, फिर आप लोग बड़े हुए, आपने उस कारोबार को बढ़ते हुए देखा, फिर आज आपने संभाल लिया है।
3: जी बिल्कुल।
1: आपने क्या क्या बदलाव कर दिया इसमें?
3: हमने बदलाव, जैसे पापा पुराने तरीके से चीजें करे जा रहे थे
1: जी,
3: आज हमने उसको एकदम नए तरीके से कर दिया है। जैसे कि अभी पशुपालन में हम जैसे गिर, साहिवाल पे इस पे काम कर रहे हैं, ए टू दूध पे हम काम कर रहे हैं, इसका जो घी बनेगा वो मार्केट में जाए, अच्छी चीज पहुंचे, तो इसी पे हम काम कर रहे हैं, पैकिंग हमारी अच्छी हो। और अभी जैसे हमने उद्यानिकी विभाग के द्वारा एक प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, जिसमें हम दूध से बने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मावा, घी, पनीर, दूध, रबड़ी और अन्य तरीके की मिठाइयाँ, वो सब हम बनाने का हमारे यहाँ इस प्लांट में पूरा काम कर रहे हैं इसी में।
1: अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए मुझे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में

0: जब शुरुआत थी तो वाकई पैसे का अभाव होता था, सरकारी योजनाओं का आपने लाभ लिया होगा, कौन सी योजना आपने ली जिससे कि आपको मदद मिली?
1: हमने योजना पीएमएफई योजना के अंतर्गत ये हमारा लोन हुआ है, उसी से हमने ये प्लांट का प्रोसेसिंग मशीन है उसी के अंतर्गत लगाई गई है।
0: अच्छा अच्छा जी। दूध उत्पादन आपके पास प्रतिदिन कितना हो जाता है?
1: दूध प्रतिदिन 2,500 से 3,000 लीटर दूध हो रहा है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट किसान भी जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, जैसे हमारे कलेक्शन पॉइंट है 2-3 गांवों में, तो जो भी किसान जिसके पास भी मवेशियाँ होती हैं तो वो हमें कलेक्शन पॉइंट में दूध ला कर देते हैं, बस वो हम कलेक्ट करते हैं और उसी का हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पूरा प्रोसेसिंग
0: 2,500 से 3,000 लीटर आपका दूध हो जाता है, फिर इसको आप बाजार में बेचते हैं?
1: हाँ, बाजार में बेचते हैं हम। इसके दूध जाता है वो अलग है, इसके हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं।
0: कौन कौन?
1: जैसे मावा, पनीर, दही और मिठाइयाँ, तो ऐसे अन्य तरीके के हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसलिए हमें
0: उससे आगे आपको सहायता मिल
1: जी जी।
0: गुणवत्ता को आप कैसे ध्यान में रखते हैं? गुणवत्ता, दूध की शुद्धता को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं। जैसे अभी प्लांट में हम पूरा मतलब केप पहनाकर, ग्लव्स पहनाकर और सारी चीजें हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, पूरा हाइजीन मेंटेन 100% रहता है।
0: जैसे मैं अभी देख रहा था कि आपके यहाँ कुछ नया काम भी चल रहा है, अभी कुछ नया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ नई मशीन्स आ रही हैं।
1: जी जी जी।
0: तो ये क्या है?
1: ये अभी जो पुराने हम जो और हम हाईटेक मशीनों में जा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे कि बहुत जल्द काम हो जाएगा, जैसे 1 घंटे का काम हम आधे घंटे में कर लेंगे, तो इस तरीके की हम कुछ अच्छी मशीन लेकर आ रहे हैं, तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो इसलिए हमें मशीन को चेंज करना पड़ा।
0: जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद हम और पढ़ाई करते और कुछ नया कुछ करते और फिर हम जाके कहीं बड़ी कंपनी में नौकरी करते, वो अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है?
1: ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये हमारा खुद का है, तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि पिताजी ने इतना किया है तो हम उसको और आगे बढ़ाएं, तो यही हम कोशिश करते हैं कि इसको हम बड़ी कंपनी बनाएं।
0: वाह। आपकी एजुकेशन कहाँ तक है?
1: मैं ग्रेजुएशन है, बीबीए किया है मैंने,
0: बीबीए किया हुआ है। मित्रों, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें और उससे खुद का रोजगार तैयार करें, हम खुद स्वरोजगार बने और लोगों के लिए रोजगार दें। कितने लोग आपके यहाँ काम करते
1: हैं? हमारे यहाँ अभी 20 से 25 लोग तो फार्म में हैं, बाकी और जो हमारे कलेक्शन पॉइंट पे लगे हुए हैं, तो ऐसे करके हमें कम से कम 40-50 लोग इनडायरेक्ट जुड़े हुए जी
0: काम कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: मतलब आपने 40 से 50 लोगों को रोजगार।
1: हाँ, और बाकी अगर ऐसा अगर अपन किसान और सारा उसको देखा जाए तो ऐसे तो 300-400 लोग जुड़े हुए हैं।
0: वाह। अच्छा, मार्केटिंग का सूत्र क्या है आपके पास?
1: मार्केटिंग का यह है कि हम खुद ही मतलब होम डिलीवरी देते हैं, अगर कोई हमें कस्टमर बोलता है कुछ तो हम डायरेक्ट हम उनके पास हम खुद ही जाकर देकर आते हैं।
0: अच्छा, अच्छा
1: जी जी।
0: अच्छा, कभी कोई किसी कस्टमर की शिकायत आ गई कि उनका दूध फट गया?
1: हाँ जी,
0: होता है ना।
1: हाँ, बिल्कुल होता है,
0: कई लोगों को संतुष्टि नहीं हो पाई, तो फिर आप उसे कैसे संभालते हैं?
1: वो उनको फिर संभालना थोड़ा सा समझाना पड़ता है। हाँ, बहुत मतलब उनको समझाना पड़ता है कि भैया कुछ हो गया होगा, गलती हो जाती है, या कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम सर्फ से बर्तन धोना या उसमें कुछ छूट जाता है तो उससे भी दूध फट जाता है,
0: वो उस एंड पर भी हो सकता है।
1: हाँ हाँ, वो तो या तो अगर हमसे कोई गलती हुई हो या उनसे कोई, तो दोनों से कुछ ना कुछ गलती हो सकती है,
0: मतलब इसमें विनम्रता बहुत जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें बात बिगड़ सकती है फिर अगर गड़बड़ होता है तो।
0: अच्छा, जैसे इतने सारे पशु आपके पास हैं, आपने कहा साहिवाल हमारे पास है, गीर भी आपके पास रहती हैं, अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस नस्ल को आपने अच्छा माना?
1: साहिवाल और गीर को, जो कि हमारे फार्म में है।
0: अच्छे
1: दूध और इसकी मार्केट में डिमांड भी है।
0: एक आदर्श डेयरी बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं होना और किस किस बात का ध्यान रखना जरूरी है?
1: आदर्श डेयरी बनाने के लिए हमें पहले तो ये देखना होगा कि पशु के लिए हमें एक पशु के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, उसके लिए अगर बैठने के लिए हमें एकदम पक्का नहीं होना चाहिए, उसके लिए कच्चा भी होना चाहिए और शीट उसके नीचे एक शीट डली हो ताकि उसको बैठने के लिए आसान हो जाए। तो शीट का एक माप होता है 4x6, तो एक पशु के लिए इतनी जगह सफिशियंट होती। उसके स्वस्थ रखने के लिए उसको नहलाना पड़ता है क्योंकि मक्खी ना बैठे, और ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि
0: ऐसा कहते हैं बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशु जो हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है।
1: हाँ,
0: तो फिर उसके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं?

0: कैल्शियम की टेबलेट्स आती हैं और दवाई आती है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसका यूज करते हैं।
1: तो आपके यहाँ पशु चिकित्सक आता है?
0: हाँ जी, हाँ जी, वो नियमित रूप से आते हैं,
1: वो जांच करते हैं।
0: जी जी, बिल्कुल।
1: हाँ, जो हमारे युवा साथी आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक में आए और अपने गांव की चीजें को शहर में लेकर जाएं, ताकि सभी को पता चले कि ऑर्गेनिक चीजें भी और हमारे गांव से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो कि मार्केट में नहीं है, नहीं पहुंच पाती है। मार्केटिंग हमें अच्छे से करना चाहिए। तो यही मैं संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग गांव की जो चीजें हैं वो मार्केट में लेकर जाएं। जी जी।
1: अच्छा, अब इसको और किस ऊंचाई तक ले जाने की योजना है आपकी?
0: अभी हम जैसे सीहोर और भोपाल में काम कर रहे हैं, तो इसको हम ये चाहते हैं कि और 5-7 शहरों में हम इसको बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद भैयारो, आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती के बारे में। संरक्षित खेती एक ऐसी आधुनिक कृषि तकनीक है जिन्हें फसल को एक नियंत्रित और ढके भय वातावरण जैसे कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस में उगाव जाते हैं, जिसे के पौधन पे अत्यधिक ठंड, तेज धूप, बारिश, कीट और रोगन को बुरा प्रभाव ना पड़े और उन्हें बचाव जा सके। संरक्षित खेती को लाभ है कि जे साल भर इन्हें हम बिना मौसम के कोई भी फसल या सब्जी फल उगा सकते हैं, ठंडी में पाले से, गर्मी में तेज धूप से और कीटन से फसल को बचा सकते हैं। सामान्य खेती की तुलना में 5-12% अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार हमें मिलत है। ड्रिप सिंचाई के इस्तेमाल से पानी और खाद की बहुत ही कम खपत होते। बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें बेच के किसान भैया हरे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: उतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप पे बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सुभैया बिन्ना हरो, जे हतो हमाओ आज को किसान बानी कार्यक्रम। अब आज्ञा दो रीता बहन को। राम राम।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए

आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बीआर अंबेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजद के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्यराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजद के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए।
बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों

में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्नाद्रमुक के IS इनबादुरै, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, S सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 तक और फिर दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया।
संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले तीन सप्ताह की

तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वें विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि NCDC का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब NCDC प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत NCDC को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आफसों में आशा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने

0: वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी पाला सुब्रमण्यम की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मंजिल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत योगेश का है, संगीत आर डी बर्मन का।

मंजिल फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीत योगेश का था, संगीत आरटी परमन का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:30 हो चुके हैं। पेश है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में हसरत जयपुरी की लिखी गज़ल भी आप सुन रहे थे। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का था। इस गज़ल के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का आज का अंक दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा थोड़ी ही देर में।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा

0: चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक, दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में

0: अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र के आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: टीथवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

खुद्दार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। गीत राहत इंदौरी का था, संगीत अनु मलिक का। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी से, श्रीरामपुर से। सुनना चाहते थे डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना कुंभार और उनका परिवार। श्रीरामपुर से ही अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और उनका परिवार। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता, आरती, प्रसाद, सोनल, बेबीसिया और उनका परिवार। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन एकनाथ और संगीता जाधव। मजरू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा और उनका परिवार। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। आइए अब सुनते हैं शब्बीर कुमार की आवाज में एस एच बिहारी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है नसीब अपना अपना। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की, जमशेदपुर झारखंड सुपाहीशाही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली, देवेन और उनका परिवार। ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद, देवांगन, नंदनी, प्रकाश और गायत्री, यहीं से यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। गुजराती बाजार सागर से राजेश मनवानी, शंकर, अनिल, सपना, चंपक भाई, निर्मल, भोले, रूपेश और उनका परिवार। सिंधी कॉलोनी से सीमा, महक, अंजलि, भूमि, बरखा और प्रियंका मनवानी। पटेंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया और उनका परिवार। मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महक प्रीत कौर और सहेज प्रीत कौर। लुम्बिनी नगर अकोला से राहुल पंसोट, मीरा और उनका परिवार। अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और उनका पूरा परिवार।

मनचाहे गीतों के कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं भ्रष्टाचार फिल्म का गीत सुरेश वाटकर और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी से, नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से। सुनना चाहते हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, सुनीता और दिशा गोस्वामी। इसी गीत को पसंद किया है डोंटी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर।

इसी गीत की फरमाइश प्राप्त हुई शिवाजी चौक कटनी से, सुनना चाहते हैं अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप, संजय, अरुण, पवन, संजीव, सुनील,

पुर से मोहम्मद साकिर मंसूरी, कमरुन्निशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी। यहीं से दिनेश और उनका पूरा परिवार। आप सभी की फरमाइश पर भ्रष्टाचार फिल्म का ये गाना।

भ्रष्टाचार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। मनचाहे गीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं विजय पथ फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी से। चीतलवाड़ी अकोला से सुनना चाहते हैं अमूल इंगले, अर्चना सर्वेश, अथिरा राजवी और उनका परिवार। केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना मयंक, तन्वी गौहर, जलपायत यादव और उनका परिवार। यहीं से जयपाल, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनका परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनका परिवार। सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना और उनका परिवार। सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनका परिवार। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू जाजोरिया।

0: विजय पथ फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत जमीर काजमी का था, संगीत अन्नु मलिक का। इस गीत के साथ ही मनचाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 9:30 होने को है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम होंगे मुंबई केंद्र से थोड़ी ही देर में।
1: आज के फनकार। दोस्तों, आज है खास दिन। जी हां, आज है अभिनेता सुनील शेट्टी का जन्मदिन। उनको विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज हम सुनेंगे अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित कार्यक्रम, लेकिन बस कुछ ही देर में।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
2: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
3: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, अ

सुनील शेट्टी 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक मैंगलोर के मुल्की तालुका में जन्मे। तुलु भाषी बंट परिवार के सदस्य सुनील शेट्टी अंक शास्त्र में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी के

0: 1992 में फिल्म बलवान से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी को जब दर्शकों ने देखा तो उनमें सभी को एक ही मैन नजर आया।
1: कमी नहीं है लड़कियों की शहर में,

जैसे जैसे सुनील फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए, वैसे वैसे उनके अभिनय में भी निखार आता गया। इसी से उत्साहित होकर सुनील ने कॉमेडी रोल किया अपनी दोहरी भूमिका वाली फिल्म गोपी किशन में। सुनील शेट्टी के दमदार अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा। उनके नेगेटिव रोल के लिए फिल्म

इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया 2001 में, और 2009 में सुनील शेट्टी को साउथ एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म रेड अलर्ट के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित

शेट्टी ने मुंबई में होटल व्यवसाय भी शुरू किया है और 2003 में फिल्म खेल से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने क्रिकेटर अजय जडेजा को बतौर हीरो चांस दिया और खुद बने

0: तो दोस्तों ये था अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अमरकांत के साथ, प्रस्तुति सहयोग पी के ए नायर, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर। अब अमरकांत को दीजिए इजाजत, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आकाशवाणी पर हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
3: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
4: नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान जी सी चंद्रशेखर जी।
5: प्रश्न संख्या 241। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग ग्रिड संपर्क पारेषण ट्रांसमिशन अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
6: I am always under the pressure of you. No, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of Bonnie Ann, except the Gargaji. I am always under the pressure of Gargaji, not of anybody else. Honorable Minister, first supplementary.

0: the mic to complete my question, sir.
1: I'm allowing you. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpayee ji.
2: आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ मंत्री से कि आप सोलर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है?
3: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
4: महोदय, भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीवेज उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन उसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है। अध्यक्ष महोदय, चौथा है तो स्कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे और इससे जुड़ी कई कंस्टेंसेस सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में एग्जाम में आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट, वेजल फैब्रिकेशन, मरीन लॉजिस्टिक और पोर्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मूर्ति जी,
5: रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रो प्रोजेक्ट, आधुनिक विंड प्रोजेक्ट, हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इज इट देयर, हैव इट बीन मेजर्ड, एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड साइक्लोन एंड हरिकेन एंड फ्लड एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दैट। थैंक यू सर।
4: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप ये जो प्रश्न है आपसे भिन्नता है और इसलिए
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का नाम या परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। वे चुपचाप मन की देहरी पर आकर ठहर जाते हैं। रोज की सहज मुलाकात, मुस्कान में घुले कुछ मधुर बातें और मौन में धड़कते अनकहे एहसास धीरे धीरे मन के आंगन में एक ऐसा अपनापन रच देते हैं जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि दिल की अनुभूति से पहचाना जाता है। तब लगता है कुछ लोग जीवन में केवल मिलने नहीं आते, वे महज एक एहसास बनकर आते हैं।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। वक्त की सीढ़ी पर कतरा कतरा लम्हे गुजर रहे हैं, इंतजार की बोझिल घड़ियां ठिठक गई हैं, दिल ख्यालों से बहलने को राजी नहीं, सारे गम भुलाने की कोशिश में दिल गुनगुना रहा है तन्हाई और इंतजार का नगमा। रात के सितार पर उदासी और इंतजार की सुर लहरियां बज रही हैं एक साथ।

पलकों पर ठहरा है समंदर, बूंदे बहुत ढेर सारी, जज्बात की लहरों से दिल बेचैन है, जगमगाते सितारे थककर सो गए हैं, आसमान का रंग नीले से सिलेटी हो चला है, धरती सन्नाटे की चादर ओढ़े किसी आहट का इंतजार कर रही है, वो अपने गम के शामियाने पर मोहब्बत के फूल काट रही है और गा रही है इंतजार का ये नगमा।

तुम्हें ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्हें ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टिमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid a probe by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying